0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्माकुमारी के विश्व के नवनिर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान की शुरुआत और ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस का उद्घाटन करेंगी।
1: 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। समारोह के दौरान 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर द वर्ल्ड रिन्यूअल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति यूथ फॉर विकसित भारत अवेकनिंग इनर स्ट्रेंथ फॉर नेशन बिल्डिंग अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगी। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, बड़ौदा।
0: इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल गुजरात के एकतानगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारत की फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय उद्योग जगत से केबल कारोबार का आकार बढ़ाने की बजाय सुदृढ़, सुशासित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंपनियां बनाने पर ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत के विकास का अगला चरण गुणवत्ता आधारित होना चाहिए और इसके लिए कॉरपोरेट क्षेत्र को अनुसंधान एवं विकास पर अधिक निवेश करना होगा। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के कार्यक्रम में कल वित्त मंत्री ने कहा कि कंपनियों को अपने यहां या शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी के माध्यम से R&D पर खर्च बढ़ाना चाहिए। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को मामला लंबित रहने के दौरान न्यायालय के दस्तावेजों को सोशल मीडिया पर साझा न करने की चेतावनी दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को बताया कि माल्या ने जांच एजेंसी का हलफनामा औपचारिक रूप से प्रस्तुत होने से पहले ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। मिजोरम के लोंगतलाई जिले की एक स्ट्रॉबेरी उत्पादक महिला जेट टी लालरी थांगी को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन संस्था द्वारा FAO 100 वीमेन हीरोज इन एग्री फूड सिस्टम्स एंड रूरल डेवलपमेंट के रूप में सम्मानित किया गया है। यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 का हिस्सा है, जो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा शुरू की गई एक पहल है। संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों पर विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग और मनमाने ढंग से हिरासत में लेने का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस महीने की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 63वें सत्र को संबोधित करते हुए वोल्कर तुर्क ने पाकिस्तान और भारत के सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों पर सरकारों की अलग अलग प्रतिक्रियाओं को उजागर किया। जापान एशियाई खेलों में आज

0: यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़े लोग उपस्थित है। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती। भारतीय फिल्मों में हम भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं।
1: समारोहे सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव घोषितवान् यत् राष्ट्रीय चलचित्र पुरस्कार समारोह अधुना देशस्य प्रमुखेषु पर्यटन स्थलेषु आयोजयिष्यन्ते। सह राज्येभ्यः केन्द्र शासित प्रदेशेभ्यश्च भविष्ये पुरस्कार समारोहाणाम् आतिथ्याय प्रमुख स्थलानां चयनं कर्तुम् आह्वानं कृतवान्। समारोहे राष्ट्रपति वर्यया देशस्य आहत्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः आगतेभ्यः द्विनवति पुरस्कार विजेतृभ्यः सम्माननं प्रदत्तम्। प्रसिद्धः कन्नड अभिनेता अनंत नागः भारतीय चलचित्र क्षेत्रे पञ्चदशकाधिक कालपर्यन्तं प्रदत्तस्य उत्कृष्ट योगदानस्य कृते प्रतिष्ठितेन दादा साहब फाल्के पुरस्कारेण सम्मानितः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्यां उडुपी इत्यत्र श्री पेजावर अधोक्षज मठस्य श्री श्री विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामिना अन्यैः गणमान्यैः च सह मिलितवान्। अस्मिन् अवसरे श्री मोदिना पद्म विभूषण यतिकुला चक्रवर्ती श्री विश्वेश तीर्थ स्वामिनः जन्म शताब्दी समारोहस्य प्रतीक चिह्नस्य अनावरणं कृतम्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् श्री विश्वेश तीर्थ स्वामिनः भक्त्या ज्ञानार्जनेन सेवया च परिपूर्णं जीवनम् असंख्य जनान् निरन्तरं प्रेरयति। सः उक्तवान् यत् तस्य जन्मशताब्द्याः उपलक्ष्ये क्रियमाणाः विविधाः उपक्रमाः तस्य महनीयादर्शान् अग्रे नेतुम् अधिकं साहाय्यं करिष्यन्ति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन आगामिषु द्विदिवसेषु छत्तीसगढ़ ओडिशा तटीय आंध्रप्रदेश तेलंगानानां पृथक पृथक स्थलेषु प्रबलाति प्रबल वृष्टेः संभावनां दृष्ट्वा रक्त वर्णपरा संचेतना प्रसारिता अस्ति। इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी निजामाबाद केंद्रम् నిలయంలో సమయం

0: सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 8 वर्ष पहले यह योजना प्रत्येक भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि आज 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने आयुर्वेद दिवस पर सभी नागरिकों, आयुर्वेदाचार्यों और वैद्यों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जाधव ने नागरिकों से देश की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली अपनाने और एक स्वस्थ, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्म कुमारी संस्थान के विश्व के नव निर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान के शुभारंभ के साथ वैश्विक आध्यात्मिक पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच अधिक सहयोग की अपील की है। डॉ. जयशंकर कल न्यूयॉर्क में संयुक्त तो राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक से अलग विकासशील और अल्प विकसित देशों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया में बढ़ते संघर्ष, आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार पर दबाव और बढ़ते ऋण जोखिम की समस्याएं देखी जा रही हैं।
1: ग्लोबल साउथ के साथ भारत का जुड़ाव सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जुटता और साझा समृद्धि के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। यह रिश्ता आपसी सीख और सहयोग पर आधारित है। साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य को तय करने में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने का साझा हित भी शामिल है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक में ईरान के विरुद्ध की गई सैन्य कार्रवाई का बचाव किया। उन्होंने सभी देशों से ईरान पर आर्थिक दबाव बनाए रखने का आग्रह किया। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के सामने समझौता करने या अमेरिका की और बड़ी सैन्य कार्रवाई का सामना करने का विकल्प है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बड़े शहरों में एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाए जाएंगे। इससे व्यवसायों को विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों तक पहुंच की सुविधा एक ही स्थान पर मिल सकेगी। उन्होंने कल नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की कार्यशाला में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि सरकार भौतिक और डिजिटल दोनों तरीकों से निर्यात सुगम बनाने के लिए कार्यरत है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता प्रगति पर है। उन्होंने कहा है कि बातचीत दिसंबर में G20 शिखर सम्मेलन तक पूरी हो जाएगी। श्री कार्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान कनाडा जाएंगे। G20 सम्मेलन 14 और 15 दिसंबर को अमेरिका के मायामी में होने की संभावना है। भारत की मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महिलाओं के 49 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। भारत के जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस के पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा है। भारत ने आज निशानेबाजी की पुरुष स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया। अनंतजीत सिंह नरुका, मेहराज अहमद खान और भवतेज सिंह गिल की टीम ने 346 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। भारत के अब निशानेबाजी में 4 रजत और 3 कांस्य पदक हो गए हैं। महेश्वरी सिंह, परिनाज धालीवाल और रायजा ढिल्लों की भारतीय तिकड़ी ने भी महिलाओं की स्की टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारतीय टीम ने महिला कबड्डी में आज दूसरे ग्रुप मैच में ईरान को 37-23 से हरा दिया है। इससे पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 42-21 से मात दी थी। अब भारत का सामना कल जापान से होगा। घरेलू शेयर बाजार सूचकांक करीब 0.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 355 अंक बढ़कर 74,884 पर और निफ्टी 110 अंक की बढ़त के साथ 23,439 पर आ गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सहेली कार्यक्रम सखी सहेली में मंदाकिनी जोशी और
1: सोनाली पाठक का
0: प्यार भरा
1: नमस्कार
0: और सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है।
1: बताइए
0: क्या
1: अभी हम जब प्रोग्राम से पहले मिले तब आप कुछ ले रहे थे।

0: कुछ दवा थी या क्या थी, गले के लिए थी या किसी और चीज के लिए थी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी।
1: अरे यानी कि तुम ध्यान रखती हो कि मैं क्या खा रही थी?
0: बिल्कुल, मेरा पूरी तरह आपके तरफ ध्यान था।
1: अरे अच्छी बात है, ध्यान रखना भी चाहिए। असल में क्या है सोनाली कि मौसम का बदलाव ना आपको परेशान कर देता है, जो आपके गले पर असर डालता है, आपके दिलो दिमाग पर असर डालता है और आपके स्वास्थ्य पर असर डालता है। तो मुझे लगता है कि मैं इन दिनों थोड़ा सा आयुर्वेद का सेवन करना पसंद कर रही हूँ।
0: आप इन दिनों कर रही है? मैं तो हमेशा से करती हूँ।
1: अच्छा, क्या लेती हो?
0: बहुत सारे ऐसे नुस्खे होते हैं जिन्हें खाने से ना उसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और धीरे धीरे धीरे करके जो रोग है, जो बीमारी है, वो जड़ से निकल जाती है।
1: अरे वाह, तभी इतनी खूबसूरत और प्यारी सी लगती है, और जो सुंदरता है तुम्हारी मुस्कुराहट की, वो भी आयुर्वेद का ही परिणाम लगती है।
0: जी, दिल से शुक्रिया। वैसे आज आयुर्वेद दिवस है तो उस पर हम जानकारी देंगे। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया और कमेंट्स तो लिखे हैं श्रोताओं ने, पर ये भी बताएं कि आपने आयुर्वेद को अपनाया है या नहीं, किस तरह से आप अपनाते हैं।
1: सबसे बड़ी बात ये है कि आयुर्वेद दिवस के बारे में तो हमारे श्रोता लिखेंगे, लेकिन आपने अपने जीवन में जैसे सोनाली ने आयुर्वेद को अपना रखा है
0: जी,
1: ऐसे अपनाया है कि नहीं, ये जानना बेहद जरूरी है। ये बताइएगा कि आप अपने जीवन में आयुर्वेद का क्या उपयोग कर रहे हैं
0: जी,
1: ठीक है।
0: साथ ही आज एक और दिन है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस है।
1: अरे बहुत महत्वपूर्ण दिन,
0: बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। पुराने दिन याद आते हैं, बचपन के जब हम न्यूज देखते थे उसमें सांकेतिक भाषा में जो न्यूज हुआ करती थी वो हम भी सुना करते थे।
1: बिल्कुल, और उसे समझने की कोशिश भी करते थे। और पता है सोनाली, जब हम इस न्यूज को कई बार देखते थे ना, तो हमें कुछ कुछ इशारे समझ भी आ जाते थे, है ना। और बचपन होता था तो शरारती होती थी, उन संकेतों को हम अपने घर पे भी दोहरा देते थे। जब हमारी मम्मी हमें आवाज देती थी तो हम उस संकेत से अपनी बात कहते थे।
0: कितना मजेदार वो
1: माहौल हुआ करता था, वो आज भी हमें याद है। बिल्कुल, और बताइए
0: साड़ियों का संसार, इसमें बाघ प्रिंट साड़ी मध्य प्रदेश की हम जानकारी देंगे। बहुत सारे हमारे साथियों ने, हमारी सखियों ने इस विषय पर भी लिखना शुरू कर दिया है, और हम सखियों से पूछेंगे कि आपके पास है कि नहीं वो साड़ी, है ना,
1: या उससे जुड़ी कोई घटना याद हो कि आपने ये साड़ी ले तो ली किसी के कहने पर
0: जी,
1: लेकिन इस साड़ी को आप कहाँ कहाँ पहन के गई, या क्या
0: कौन से कलर की है, आप
1: कैसी है, और सामने वाले ने आपको उस साड़ी में देखा या आपकी सखियों ने देखा तो क्या कहा, या आपकी पतिदेव ने क्या कहा।
0: ये तो पता नहीं, बताएंगी नहीं बताएंगी हमारी सखिया।
1: बताना चाहिए, अगर आपके पतिदेव ने कहा कि तुम कितनी खूबसूरत हो, तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा।
0: वही तो। और शब्द हमारा विचार आपके, आज का शब्द है आशा, जो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आशा का दामन हम जब थामे रहते हैं तो जिंदगी में हम आगे बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल, तो अब हमारी श्रोताओं की आशा क्या है?
0: और नहीं, व्यंजन भी है ना, आज लौकी के व्यंजन।
1: अच्छा, तो आप आज व्यंजन भी बनाने वाली हैं?
0: हाँ, और हमारे साथियों ने तो भर भर के लौकी के व्यंजन लिखकर भेज भी दिए हैं।
1: यहाँ पर मैं थोड़ा सा बचपने की ओर लौट रही हूँ।
0: क्यों?
1: मैं लौकी, मुझे पसंद नहीं है।
0: अरे पर लौकी का हलवा भी नहीं पसंद?
1: अच्छा, लौकी का हलवा भी बनता है?
0: हाँ, लौकी का हलवा, लौकी के लच्छे, लौकी का रायता, लौकी के कोफ्ते।
1: अरे वाह, मुझे लगा आप लौकी की सब्जी बना के खिलाने वाली हैं।
0: और सब्जी भी उसमें चना दाल डाल दो, कुछ अलग स्टाइल से बना दो तो वो भी आपको पसंद आएगी।
1: तो चलिए हम अपने श्रोताओं को कहते हैं कि लौकी के क्या क्या व्यंजन बनाए जा सकते हैं बताइए ना, ताकि हम जैसे लोगों को जो लौकी को देखते ही नाक भौं सिकोड़ते हैं, उन्हें लगे कि नहीं लौकी बहुत अच्छा।
0: और लौकी मेरी फेवरेट सब्जी है,
1: मुझे भी लौकी बहुत पसंद है जी। पर मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने बच्चा बन गई थी।
0: ऐसे बच्चा बनना चाहिए ना।
1: हाँ, बच्चे करते हैं ना अक्सर घर में, क्या मम्मी लौकी की सब्जी बना दी।
0: मम्मियां क्या करती, उसके पराठे बना के खिलाती। बच्चों को लौकी जाना ही चाहिए, उनके
1: बिल्कुल
0: लौकी के बहुत फायदे हैं।
1: बिल्कुल, तो वो फायदे हमें बताएंगे हमारे श्रोता कि वो लौकी के क्या क्या व्यंजन बनाते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि अपने बच्चों को कितनी चालाकी से लौकी बनाकर खिला देते हैं, है ना।
0: और अब गाना सुनते हैं।
1: बिल्कुल।

0: संदे तुम्हारी आंखें भी बहुत कुछ कह रही है कि आयुर्वेद का सेवन करने के बाद तुम कितनी चमकदार हो गई हो।
1: वैसे आज यानी प्रतिवर्ष 23 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। वर्ष 2026 में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है और ये दिवस पंचांग के अनुसार धनतेरस यानी धनवंतरी जयंती के दिन मनाया जाता था, लेकिन तिथियों में हर साल होने वाले बदलाव के कारण भारत सरकार के आयुष मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने वर्ष 2025 से इसे हर साल 23 सितंबर यानी शरद विषु को मनाने का ऐतिहासिक और निश्चित फैसला किया ताकि इसे वैश्विक कैलेंडर पर एक स्थायी पहचान मिल सके।
0: बिल्कुल सही कहा। और इस वर्ष की मुख्य जो थीम है ना वो ये है कि स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद, और इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2016 में की गई थी ताकि चिकित्सा की इस प्राचीन और समग्र पद्धति को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिया जा सके।
1: और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में प्राकृतिक और आयुर्वेदिक जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना, बीमारियों से बचाव और दैनिक जीवन में संतुलन स्थापित करना है। आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा परंपरा है जिसका अर्थ है आयु का विज्ञान या जीवन का ज्ञान। आयुर्वेद केवल बीमारी होने पर उपचार करने की बात नहीं करता बल्कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य को बनाए रखने और जीवन को संतुलित बनाने पर भी जोर देता है।
0: बिल्कुल सही कहा सोनाली। और आयुर्वेद जो है हमारी नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और जो शारीरिक सक्रियता यानी एक्टिवनेस
1: जी
0: उसको बहुत महत्व देता है। दिनचर्या और ऋतुचर्या के माध्यम में से जो है बदलते मौसम के अनुसार अपनी जीवन शैली में उचित बदलाव करने की भी हमें इसी से सीख मिलती है।
1: और आयुर्वेद में ताजा, संतुलित और व्यक्ति की आवश्यकता के अनुरूप भोजन पर जोर दिया जाता है। सही भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन की नींव भी माना जाता है।
0: और आयुर्वेद स्वास्थ्य को केवल शरीर तक सीमित नहीं रखता बल्कि हमारी मानसिक शांति की का भी इलाज करता है। अच्छी नींद आती है और तनाव कम करने वाली आदतें और सकारात्मक जीवन शैली को भी बहुत महत्व देता है।
1: और आयुर्वेद हमें प्रकृति के करीब रहने की प्रेरणा देता है। मौसम, वातावरण और शरीर की आवश्यकताओं के बीच तालमेल बनाए रखना इसकी महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है।
0: और आयुर्वेद रोकथाम को विशेष महत्व दिया जाता है, यानी कि जो नियमित दिनचर्या है, उचित आहार है और स्वस्थ जो आदत है उसके माध्यम से हम अपने को स्वस्थ बना सकते हैं ऐसा कहा जाता है।
1: और आयुर्वेद में रोकथाम दिया जाता है करना, पर्याप्त नींद लेना, स्वच्छता रखना, मौसम के अनुसार खान पान में बदलाव करना आज भी दैनिक जीवन में अपनाई जा सकती है।
0: हाँ, और आयुर्वेद जो है हमें संदेश भी देता है कि स्वास्थ्य केवल बीमारी का अभाव नहीं बल्कि शरीर, मन, आहार, दिनचर्या और प्रकृति के बीच संतुलन का नाम भी आयुर्वेद है। जीवन की वो हमें दिनचर्या को अधिक संतुलित और जागरूक बनाने की प्रेरणा भी देती है।
1: और आज एक और खास दिन है, शरद विषु दिन है।
0: अच्छा,
1: यानी इस दिन जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है और उस वक्त दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, यानी 12-12 घंटे के होते हैं, इसलिए इस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया।
0: हमारे श्रोताओं ने भी काफी बातें लिखी हैं
1: जी,
0: है ना।
1: हमारे एक साथी कहते हैं कि आयुर्वेद दिवस हर साल 23 सितंबर के दिन मनाया जाता है, वही इस दिन से जुड़ी एक और बात कि मेरा जन्मदिन भी इसी दिन है यानी 23 सितंबर के दिन आता है, मतलब आज ये दूरियां नजदीकी अपन गई है, अजब इत्तेफाक है। अगर दवाई तो खांसी की तकलीफ हो जाती थी तब पिताजी मुझे वैद्यराज के पास अक्सर ले जाया करते थे। एलोपैथी के मुकाबले आयुर्वेदिक दवाई का असर धीरे धीरे होता है लेकिन दर्द को मूल से निकाल देने की क्षमता रखता है।
0: एक श्रोता लिखते हैं कि आयुर्वेद दिवस आज ही मैंने अश्वगंधा के बीज खरीद लिए हैं जो हमारे क्षेत्र में थोड़े दिनों में उगाने की कोशिश करेंगे। जिनके मूल में से जो दवाई बनती है वो ब्लड प्रेशर में इलाज करती है और आयुर्वेद की दवा काफी इन्हें सूट करती है। नीम के पत्तों को गर्म करके पानी मतलब गर्म करके पानी ठंडा कर लेते हैं, नीम के पत्तों को पानी में उबाल लेते हैं, उसे ठंडा करके नहाते हैं तो खुजली कंट्रोल करने में फायदा रहता है।
1: यानी हर स्किन हो, फिर शरीर हो, आंखें हो, हर चीज के लिए आयुर्वेद के लिए दवा है। और घर में हमारे बहुत सारी चीजें तो घर में ही मौजूद होती है।
0: रसोई में कितनी सारी चीजें हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं
1: जी, तो हमें अपनाना चाहिए आयुर्वेद को ताकि जो है रोग जो है पूरा मूल रूप से नष्ट हो जाए।
0: बिल्कुल सही कहा। और जो रसोई में बने मसाले हैं और जिनसे हम सब्जी में डालते हैं या जिनको हम सब्जी में डालते हैं हैं और उनका सेवन करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें हमें सेवन में लाना चाहिए
1: जी।
0: बजाय इसके कि हम बाहर जाके चटपटे मसाले ढूंढते हैं अपने स्वाद को बढ़ाने के लिए, तो अगर हम इस तरह से आयुर्वेद का नियमित और संतुलित सेवन करते हैं तो बहुत सारी चीजों से परेशानियों से हमें छुटकारा मिल सकता है, है ना।
1: जैसे बहुत जैसा कुछ लोग एकदम से ठंडा और गर्म खाते हैं, जैसे कुछ कुछ लोग जो है ना आइसक्रीम यानी गर्म गर्म गुलाब जामुन हो उसमें भी ठंडा ठंडा आइसक्रीम डाल, तो इसे भी विरोधी माना जाता है। तो छोटे छोटी बातें होती है उसे, हाँ एकाध बार ठीक है साल में से एकाध बार किसी पार्टी में खाया, पर हर बार वही आदत है। कुछ कुछ लोग जो होते हैं खाना खाते समय कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो उससे भी हमारा ना हाजमा बिगड़ सकता है।
0: बिल्कुल बिगड़ता है। और हम सोचते थे जब छोटे थे कि खाना खाने के बाद तो आइसक्रीम खानी ही चाहिए, खाना पच जाता है, ऐसा हम बेवकूफ में कहा करते थे, कहा जाता था। लेकिन जब हम इसकी गहराई में गए तो पता चला कि वो हमारे शरीर के लिए कितना गलत करती है कि आपने गरम गरम भोजन किया और उसके बाद आप ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा ले रहे हैं, तो ये जो सर्द गर्म का बेमेल हम भोजन करते हैं वो हमारे शरीर को नुकसान ही पहुंचाता है। कभी कभार आपने कहा करना भी वैसे गलत है, पर चलिए आपने कभी कभार आपकी बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हर बार बॉडी भी जो है रिएक्ट कर देती है ना।
1: और अब गीत सुन ले।
0: हाँ, नहीं तो हमारे श्रोता भी रिएक्ट कर देंगे।

0: तो सोनाली कुछ कहना चाह रही थी तुम कि हमारे श्रोता लगातार हमें संदेश भेज रहे हैं और काफी अच्छे संदेश भेज रहे हैं।
1: एक सांकेतिक भाषा दिवस पर एक हमारी सखी ने बहुत अच्छा संदेश लिखकर भेजा है। ये लिखती है कि सांकेतिक भाषा केवल हाथों की भाषा नहीं, दिलों को जोड़ने का माध्यम है। जहाँ शब्द साथ छोड़ देते हैं, वहाँ भावनाएं इशारों की भाषा में अपना रास्ता बना लेती है। ये भाषा हमें सिखाती है कि संवाद के लिए आवाज ही जरूरी नहीं, समझने वाला और महसूस करने वाली संवेदना भी जरूरी है। अतः हम केवल सांकेतिक भाषा को समझने की कोशिश ना करके बल्कि उन भावनाओं को भी समझे जो शब्दों के बिना कही जाती है, क्योंकि सच्चा संवाद आवाज से नहीं संवेदना से होता है।
0: क्या बात,
1: कितनी सुंदर, दिल को छू लेने की बात
0: अभिव्यक्ति दी है
1: जी।
0: और जब बात इशारों की कर रही थी ना, तो मुझे वो गाना याद आ रहा था, इशारों में दिल ले दिल वाले। बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से।

0: बहुत खूबसूरत हुनर है ये भाषा जो सांकेतिक भाषा के रूप में हमारे सामने आई है
1: जी।
0: कि इशारों में आप मतलब अपनी बात समझा देते हैं और सामने वाला समझ भी जाता है। तो ये आज ही के दिन मनाया जाता है दिन भी, ये दिन दुनिया भर में सांकेतिक भाषाओं के महत्व को और जो श्रवण बाधित समुदाय के जो भाषाई अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित किया गया है उन लोगों के लिए जो थोड़ा सुनने में जिनको दिक्कत होती है।
1: जी, सांकेतिक भाषा केवल हाथों के इशारों का माध्यम नहीं बल्कि भावनाओं, विचारों और ज्ञान और संवाद को व्यक्त करने वाली एक पूर्ण भाषा है। अलग अलग देशों में और क्षेत्रों में सांकेतिक भाषाओं के अपने व्याकरण और शब्दावली और अभिव्यक्ति के तरीके हो सकते हैं।
0: और इस दिन का मुख्य जो उद्देश्य है वो समाज में ये समझ विकसित करना है कि सुनने या बोलने में कठिनाई रखने वाले लोगों को भी समान अवसर, सम्मान और प्रभावी संवाद का पूरा अधिकार है।
1: जी, और शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और सार्वजनिक जीवन में सांकेतिक भाषा की उपलब्धता उनके लिए भागीदारी को अधिक सुगम बनाती है।
0: हाँ, और संवाद की कठिनाई जो व्यक्ति को समाज से अलग थलग महसूस करा सकती है, इसलिए सांकेतिक भाषा इस दूरी को कम करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम बनाया गया है।
1: और ये बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि श्रवण बाधित बच्चों को उनकी समझ के अनुरूप भाषा में शिक्षा मिले तो वे ज्ञान और कौशल को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, और सांकेतिक भाषा को केवल श्रवण बाधित समुदाय तक सीमित रखना भी उचित नहीं है सोनाली। यदि परिवार, शिक्षक, विद्यार्थी, स्वास्थ्य कर्मी और समाज के अन्य लोग इसके बुनियादी संकेत सीखें तो रोजमर्रा के संवाद में भी कई बाधाएं कम हो सकती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और स्कूलों और संस्थानों में सांकेतिक भाषा के प्रति जागरूकता के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। जहां शब्द आवाज नहीं बन पाते वहां संकेत संवाद का पुल बन जाते हैं।
0: और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हमें ये भी संदेश देती है कि जहां हर व्यक्ति को अपनी बात कहने और दूसरे की बात को समझने का अवसर मिले ऐसे दिन को बिल्कुल मनाया जाना चाहिए।
1: एक साथी ने भी हमारे लिखा है कि किसी के लिए हाथों की हल्की सी मुद्रा सिर्फ इशारा हो सकती है, लेकिन जो सुन नहीं सकते उनके लिए वे इशारे नहीं बल्कि शब्द, वाक्य, संवाद और संवेदनाएं हैं। सांकेतिक भाषा ने कई लोगों को सिर्फ अपनी बात कहने का माध्यम नहीं दिया बल्कि उन्हें शिक्षा, रोजगार और दूसरों की जिंदगी बदलने की ताकत भी दी है।
0: बहुत सुंदर। और अब सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: सुनते हैं

0: आपका जब साथ मिलता है ना तो मेरा भी यही हाल होता है।
1: हमें हो करना पड़ता है।
0: जी, हमारे एक साथी ने लिखा है, मेरे योग गुरु आयुर्वेद के बहुत अच्छे ज्ञाता है, वे कहते हैं कि आपके रसोई भी एक आयुर्वेदिक प्रयोगशाला है। तमाम मसालों में कुछ न कुछ आयुर्वेदिक गुण होते हैं, हल्दी, धनिया, नमक, गरम मसाले, सरसों का तेल, देसी घी आदि में बहुत आयुर्वेदिक गुण होते हैं। तो वहीं एक साथी कहते हैं कि मुझे चाय पीने का बहुत शौक है, तो मेरे घर पर सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी चाय को आयुर्वेदिक बना देती है। चाय में तुलसी के पत्ते, लौंग, गिलोय, अदरक, इलायची, दालचीनी पीस कर बनाती है। चाय की चाय और आयुर्वेदिक फायदे भी होते हैं।
1: बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है कि आप आयुर्वेद को इस रूप में
0: अपनाते हैं। और सर्दियों के मौसम में या फिर गले में कुछ खराश हो तब तो इस तरह की चाय जो होती है ना, रामबाण हो जाती है हमारे लिए।
1: बिल्कुल सही कहा। और ध्यान होगा सोनाली तुम्हें कि बचपन में हमारी जो माँ है, हमें जब जैसी खांसी होती थी या कफ होता था तो अदरक कूट के शहद के साथ काली मिर्च मिला के ना चम्मच से चटा देती थी,
0: साथ ही हल्दी का दूध
1: पिला देती थी। तो इस तरह से कितने ही मसाले हमारी रसोई में मिलते हैं।
0: और जो आजकल के बच्चे ना, नाक भौं सिकोड़ते हैं कि हम घी नहीं खाएंगे, भले ही वो फिर वो बटर खाएंगे या फिर बाहर का जो मेयोनीज वगैरह वो खाते हैं और जो केक में जो क्रीम होती है वो खाते हैं, पर घी खाने के नाम से कतराते हैं। पर देसी घी जो है वो बहुत जरूरी है हमारी त्वचा के लिए, आंखों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत जरूरी है। तो हमारी दादी माँ, नानी माँ या हमारी माँ जो हमें खिलाती थी वो खाना बहुत हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और वही जो हमें एक इस तरह का शौक हुआ है कि हम खूबसूरत दिखें, सिर्फ खूबसूरत दिखें
0: जी,
1: है ना, या दुबले पतले इस तरह का जो आजकल एक मार्केट चलन आ गया है उसके पीछे भाग रहे हैं। दुबला होना बहुत अच्छी बात है, स्वस्थ रहना उससे भी अच्छी बात है, और खूबसूरत दिखना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे अच्छा खान पान छोड़ देना ये सबसे बड़ी मूर्खता है।
0: और अगर अच्छा खान पान रखेंगे ना तो हम दिखेंगे ही सुंदर। तन से भले ही ना दिखे पर मन से तो हम जरूर दिखते हैं,
1: और तन से भी दिखेंगे, क्यों ना दिखेंगे। जब आप अच्छा भोजन लेंगे तो
0: होंगे,
1: तो अच्छी होगी, रिएक्शन अच्छा ही होगा। और अब एक अंतराल ले लेते हैं।
0: बिल्कुल।

0: इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है.
1: कार्यक्रम है सखी सहेली,
0: और आज सखी सहेलियां कौन है?
1: मंदाकिनी जी
0: और सोनाली जी. तो चलिए साड़ी की दुनिया में चलते हैं, जहाँ आप मुझे एक साड़ी गिफ्ट करने वाली हैं.
1: हाँ बिल्कुल है मेरे पास में, और आपके लिए मैं लेकर आऊंगी.
0: बाग प्रिंट साड़ी.
1: हाँ।
0: क्या बात है.
1: मध्य

0: प्रदेश की ये सुंदर साड़ी है बाघ प्रिंट साड़ी और भारत की पारंपरिक साड़ियों की दुनिया में बाघ प्रिंट अपनी अनूठी ब्लॉक प्रिंटिंग, प्राकृतिक रंगों और पारंपरिक डिजाइनों के कारण विशेष स्थान रखता है। और ये कला जो है मध्य प्रदेश के धार जिले के बाघ कस्बे से जुड़ी हुई है। पीढ़ियों से कारीगर इस कला को हाथों की मेहनत और बारीकी से आगे बढ़ाते हुए आए हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, और बाघ प्रिंट का नाम मध्य प्रदेश के बाघ कस्बे से जुड़ा है जैसा अभी आपने बताया भी। और ये जो क्षेत्र है अपनी पारंपरिक कपड़ा छपाई कला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध भी है। और ये भी माना जाता है सोनाली कि इस कला पर राजस्थान और गुजरात की पारंपरिक ब्लॉक प्रिंटिंग परंपराओं का भी प्रभाव पड़ा है।
0: और समय के साथ स्थानीय कारीगरों ने अपनी विशिष्ट शैली विकसित की है। और इस कला की सबसे बड़ी विशेषता है कि आधुनिक मशीनों की जगह हाथ से तैयार किए गए लकड़ी के ब्लॉक और पारंपरिक रंगाई छपाई की प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है।
1: हाँ बिल्कुल, और बाघ प्रिंट की साड़ी तैयार करना केवल कपड़े पर ब्लॉक लगाने का काम भर नहीं है, बल्कि इसमें कई चरण शामिल होते हैं। जैसे कपड़े की तैयारी क्या होती है, सबसे पहले सूती या रेशमी कपड़े को अच्छी तरह धोकर और साफ करके छपाई के लिए तैयार किया जाता है और इससे कपड़े पर रंग अच्छी तरह बैठ जाता है।
0: और कारीगर शीशम या अन्य उपयुक्त लकड़ी पर पारंपरिक डिजाइन उकेर कर ब्लॉक तैयार करते हैं। प्रत्येक ब्लॉक का डिजाइन अलग हो सकता है।
1: हाँ, और परंपरागत जो बाघ प्रिंट में प्राकृतिक रंगों का जो है वो विशेष महत्व माना गया है। लाल और काले रंग इसकी पहचान माने जाते हैं। रंगों को तैयार करने और कपड़े पर स्थायी रूप से बैठाने के लिए पारंपरिक प्रक्रियाओं का भी पालन किया जाता है।
0: और कारीगर रंग लगे लकड़ी के ब्लॉक को कपड़े पर सावधानी से दबाता है। एक छोटी सी गलती पूरे पैटर्न को प्रभावित कर सकती है, इसलिए इसमें अनुभव और हाथ की सटीकता बहुत महत्वपूर्ण होती है।
1: सोचिए, थोड़ा सा भी आपने कम या ज्यादा दबा दिया सोनाली उस ब्लॉक को, तो सारा जो डिजाइन है वो फैल जाएगा, कलर जो है वो फैल जाएंगे। और छपाई के बाद कपड़े को पारंपरिक तरीके से धोया जाता है, कई चरणों से जब वो निकल जाता है तो रंगों में गहराई और चमक आती है।
0: और पारंपरिक रूप में इसमें काला, लाल और सफेद रंगों का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग साड़ी को जीवंतता देता है और काला रंग डिजाइन को उभारता है और सफेद या हल्का रंग पूरे पैटर्न को संतुलित करता है।
1: और आज के समय की अगर हम बात करें तो बाघ प्रिंट नए रंगों से भी बनाए जाते हैं। जो लोग लाल काले से परहेज रखते हैं उनके लिए भी नए कलर्स हैं, जिससे ये पारंपरिक होने के साथ साथ आधुनिक भी लगती है और बहुत ही आकर्षक भी लगती है साड़ी।
0: और इसके प्रिंट देखे तो इसमें फूल और पत्तियां, बेल बूटे, ज्यामितीय आकृतियां और पारंपरिक भारतीय अलंकरण का भी इसमें जो चित्र बनाए जाते हैं। और इन डिजाइनों की खूबसूरती यह है कि वो बहुत अधिक चमक दमक के बिना भी साड़ी को आकर्षक बना देते हैं।
1: हाँ, हर साड़ी थोड़ी अलग हाथ से बनने के कारण प्रिंट में हल्का सा अंतर दिखाई देता है, लेकिन ये इसकी खूबसूरती का हिस्सा है। और बदलते फैशन के साथ बाघ प्रिंट का प्रयोग सिर्फ साड़ियों तक सीमित नहीं है, बल्कि दुपट्टों में, कुर्तों में, स्टोल, शर्ट, स्कर्ट और अन्य परिधान भी इससे बनाए जाने लगे हैं।
0: और फैशन डिजाइनरों ने पारंपरिक बाघ प्रिंट को आधुनिक और नए रंगों के साथ प्रस्तुत किया है। इससे युवा पीढ़ी में भी इस हस्तकला के प्रति रुचि बढ़ी है। और बाघ प्रिंट केवल कपड़े पर की जाने वाली छपाई नहीं, बल्कि अनेक कारीगर परिवारों की आजीविका और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी कला है। इसे जीवित रखना स्थानीय कारीगरों के कौशल को सम्मान देना भी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये वहाँ की जो है आर्थिक उसको मदद करता है ना, अर्थ का अर्थ प्रधान उस पर भी काम करता है। जब हम हाथ से बनी ऐसी साड़ी खरीदते हैं जो हमें केवल वस्त्र नहीं खरीदते बल्कि उसके पीछे छिपे कारीगर के श्रम को देखते हैं, समय को देखते हैं, तो हम उनको सम्मान भी देते हैं उनके अनुभवों को।
0: जी, और बाघ प्रिंट साड़ी में मध्य प्रदेश की मिट्टी की खुशबू, कारीगरों की उंगलियों की कला और भारतीय परंपरा की सुंदर छाप दिखाई देती है। लकड़ी के ब्लॉक से कपड़े पर उभरते फूल पत्ते केवल डिजाइन नहीं होते, वे हमारी लोक कला व सांस्कृतिक विरासत की कहानी भी कहते हैं।
1: इसीलिए बाघ प्रिंट साड़ी को पहनना मानव परंपरा को अपने आंचल में सहेजना है। एक ऐसी परंपरा जिसमें प्रकृति के रंग, कारीगरों की मेहनत और भारतीय हस्तकला की आत्मा तीनों एक साथ दिखाई देते हैं।

0: इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना। तो हमारी सखियों ने क्या लिखा कि साड़ी को पहनने के बाद उन्हें क्या कहा किसी ने?
1: उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर लगती है। एक सखी ने लिखा है कि मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ और रहने वाली एक मेरी सहेली भोपाल से बाग प्रिंट के सूट और साड़ियाँ लाकर बेचती है। मैंने भी कई सूट लिए और साड़ी अभी तक नहीं ली है। तो भाई साड़ी भी ले लीजिए, बहुत सुंदर साड़ी होती है।
0: हाँ, इसको मन में मत रखिए और फिर बताइए कि उस साड़ी को पहनने के बाद लोगों ने आपसे क्या कहा। वही एक श्रोता लिखती है कि मैं बाग प्रिंट की साड़ियों के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मैं अभी MP से हूँ, मेरे पास प्रिंट की साड़ियां हैं और सूट्स, बेडशीट्स, हर चीज है और मुझे पसंद भी है क्योंकि मेरे घर में बहुत सा कलेक्शन आपको मिलेगा। तो इनके घर चली
1: चलिए और ले लेते हैं,
0: वही ना। और मेरी एक फ्रेंड है जिसने बाग मंच करके एक अपना शॉप खुला हुआ है, उसके पास अगर आप जाएंगी तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या लूं क्या छोड़ूं। ऐसा लगेगा हर चीज आपकी पसंद की है। इतना कंफर्टेबल फैब्रिक होता है कि एक बार आप पहनेंगी तो कभी उसे छोड़ ही नहीं पाएंगी।
1: वही एक सखी ने लिखा है कि बाग प्रिंट कला का इतिहास सदियों पुराना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस कला को खत्री समुदाय के शिल्पकारों द्वारा लगभग 400 वर्ष पहले शुरू किया गया था, जो सिंध से आकर बाग नदी के किनारे बस गए। इस नदी के पानी में पाए जाने वाले विशेष खनिजों के कारण इन साड़ियों के रंगों में एक अनोखी चमक और पक्कापन आता है।
0: बिल्कुल सही कहा सोनाली, और मुझे तो अब आशा ही नहीं विश्वास भी है कि हम भी जल्द ही बाग प्रिंट की साड़ी खरीदने वाले हैं या तुम मुझे गिफ्ट देने वाली हो।
1: बिल्कुल, मुझे भी आशा है कि ये साड़ी बिल्कुल मैं खरीद लूंगी और पूरा विश्वास है कि आप तक पहुंच जाएगी।
0: अरे वाह, तभी तो कहते हैं कि दुनिया आशा और विश्वास पर ही टिकी है। हमारे एक श्रोता लिखते भी है कि आशा एक छोटा सा शब्द है लेकिन अपने अंदर पूरी दुनिया समेटे हुए है। जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं, रास्ते धुंधले पड़ जाते हैं और मन थकने लगता है, तब यही आशा भीतर से कहती है अभी सब खत्म नहीं हुआ, एक नई सुबह बाकी है। आशा वो रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता तलाश लेती है और यह हमें इंतजार करना सिखाती है, प्रयास करते रहने का हौसला देती है और टूटते हुए मन को फिर से संभाल लेने का भी एक माध्यम है आशा।
1: आशा हमारे विचारों की वो रोशनी है जो कठिन परिस्थितियों में भी हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। जब रास्ते कठिन लगने लगते हैं तब आशा हमें विश्वास दिलाती है कि परिस्थितियां बदल सकती है और आने वाला कल बेहतर हो सकता है। सकारात्मक विचारों से जुड़ी आशा मन में उत्साह, धैर्य और आत्मविश्वास पैदा करती है। इसलिए जीवन में कितनी भी चुनौतियां आए हमें आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आशा ही नए सपनों और नई शुरुआत की पहली किरण है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि आशा का सामान्य अर्थ उम्मीद, भरोसा या किसी अच्छी बात की पूरी होने की इच्छा है। किसी काम के पूरे होने की संभावना पर विश्वास रखना, भविष्य में कुछ अच्छा होने की चाह रखना, ये मन की भावना है और जिंदगी में उम्मीद के साथ जिंदगी जीने की चाहत बढ़ाती है। आशा दिल है छोटा सा और छोटी सी आशा।
1: एक हमारे साथी कहते हैं, आशा है तो जीवन में उजाला है, आशा है तो हर मुश्किल का रास्ता है। आशा केवल एक विचार नहीं बल्कि विषम परिस्थितियों में मुस्काने और आगे बढ़ने की अदम्य इच्छा शक्ति है। निराशा चाहे कितनी भी गहरी हो, आशा की एक किरण निराशा के पूरे पर्वत को पिघलाने का सामर्थ्य रखती है। जब मेहनत और धैर्य थकने लगते हैं तब आशा ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने का हौसला देती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और क्या क्या लिखते हैं हमारे श्रोता?
1: आशा उस विश्वास का नाम है जो टूटते हुए मन को फिर से संभाल लेता है। कभी किसी अपने के दो शब्द से मिलती है, कभी किसी अनजान की मुस्कान में, तो कभी अकेलेपन में स्वयं से की गई बातचीत हमें आशा सिखाती है कि ठहराव अंत नहीं होता, कभी कभी यही ठहराव किसी नए सफर की तैयारी होता है।
0: ये तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने। कई बार हम ठहर जाते हैं ना जिंदगी में तो हम उदास हो जाते हैं, अरे जिंदगी तो हमारी हो गई
1: जी,
0: जिंदगी तो यही ठहर गई, लेकिन ये नहीं पता होता कि अगले ही पल हम नए सफर की ओर निकल भी सकते हैं, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ खुशहाल होंगे। आशा उम्मीद की एक ऐसी किरण है जो निराशा का तमस यानी अंधकार चुटकियों में गायब कर सकती है। जैसे विविध भारती तुम आशा विश्वास हमारे, हम धरती तुम आकाश की प्रसारण तरंगे, जो सदा साथ रहती है हमारे जब तक सांस है तब तक आस है।
1: क्या बात है। एक साथी कहते हैं कि वास्तविक आशा केवल निष्क्रिय इच्छा नहीं बल्कि संघर्ष से जन्म लेती है। जब हमारा धैर्य और हमारी क्षमताएं कठिन दौर से गुजरती है तब आगे बढ़ने की ललक ही आशा कहलाती है। जिस प्रकार शरीर को जीवित रखने के लिए श्वास यानी सांस जरूरी है, ठीक उसी प्रकार मन को जीवंत रखने के लिए आशा अनिवार्य है। आशावादी व्यक्ति कभी हार नहीं मानता, वह हर असफलता को नई शुरुआत का अवसर मानता है। इसलिए अपनी उम्मीदों को कभी टूटने ना दे, क्योंकि एक बेहतर कल की शुरुआत हमें आज की उम्मीद से होती है।
0: और अब हमारे श्रोताओं को आशा है कि हम एक गीत उनको सुनाएंगे।

0: तो हमारी भी छोटी सी आशा यही है सोनाली कि आज लौकी के जो व्यंजन है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।
1: एक सखी ने लिखा है कि हमारे प्रांत में लौकी सात्विक भोजन में आता है, छठ पूजा के पहले दिन इसे खाया जाता है। इसकी सब्जी, इसकी पकौड़ी, लौकी को घिसकर गेहूं के आटे में मिलाकर इसके पराठे बनते हैं, घिसकर इसके कोफ्ते बनाए जाते हैं, बड़े टुकड़ों में काटकर उबालकर इंस्टेंट अचार भी तैयार होते हैं। कार्तिक मास की एकादशी में इसका हलवा और खीर बनाकर श्री विष्णु भगवान को भोग लगाया जाता है।
0: क्या बात है, यानी लौकी इतनी स्वादिष्ट भी होती है और महत्वपूर्ण भी होती है। एक ने लौकी की थाली पीठ बनाने की विधि बताई, बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता है। इसे बनाने के लिए कद्दू की कीवी, लौकी, गेहूं का आटा, बेसन, ज्वार का आटा, कटा प्याज, मिर्च, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, बड़ा चम्मच सफेद तिल और अजवाइन जीरा, छोटा चम्मच और हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ये सभी नमक स्वादानुसार चाहिए, हींग चाहिए, कटावा धनिया, तेल या घी सेकने के लिए। एक बड़े कटोरे में कद्दू की लौकी ले, लौकी का पानी नहीं निचोड़ना क्योंकि इसे पानी से आटा गूंदा जाएगा। इसमें सभी सामग्री मिलाकर नरम आटे जैसा गूंद ले। इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। एक साफ सूती कपड़े गीला करके चकले पर फैलाएं। आटे की एक लोई ले और उंगली में थोड़ा सा पानी लगा 3-4 छोटे छेद कर दें। अब तवा गर्म करें और उस पर थोड़ा सा तेल लगाएं। कपड़े वाले थाली पीठ को कपड़े सहित तवे पर उल्टा पलट लें और धीरे से कपड़े को हटा लें। इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लें और दही और हरी चटनी के साथ इसे खा सकते हैं।
1: अब थाली पीठ आपने बनाना सिखाया है तो मैं लौकी का रायता बनाना बताऊंगी।
0: अरे
1: एक सखी ने हमारे लिखकर भेजा है, लौकी का रायता बहुत ही स्वादिष्ट और ठंडक देने वाली डिश है जिसे आप सिर्फ 20 मिनट में बना सकते हैं। 250 ग्राम लौकी को छीलकर कद्दूकस कर लें। ताजा दही, 2 कप फेटा हुआ भुना जीरा, 1 छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच सादा नमक, स्वादानुसार हरी मिर्च, 1-2 कटी बारी और धनिया बारीक कटा हुआ। तड़के के लिए तेल या घी, जीरा ही राई बनाने की विधि। कद्दूकस की हुई लौकी में थोड़ा सा पानी डालकर बर्तन और कुकर में नरम होने तक उबाल ले। उबली हुई लौकी का अतिरिक्त पानी निचोड़ ले और पूरी तरह से ठंडा होने दे। एक बाउल में ताजा दही ले, उसमें फेंट ले। फेंटे हुए दही में उबली हुई लौकी, हरी मिर्च, भुना जीरा पाउडर, काला नमक और सादा नमक डालकर अच्छी तरह मिलाए और एक छोटे पैन में तेल घी गर्म करके उसमें तड़का लगाए और इस उसके ऊपर रायते के ऊपर डाल दे और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डालकर ठंडा ठंडा परोसे।
0: क्या बात है, और इसके साथ ही मैं आपको लौकी का स्वादिष्ट हलवा भी खिलाऊंगी सोनाली, है ना। ये कहते हैं कि कद्दूकस कर ले लौकी को, दूध और घी के साथ इसे पकाया जाता है। लौकी ले लें, देसी घी ले लें, दूध ले लें, चीनी ले लें, मावा ले लें, ड्राई फ्रूट चाहिए, इलायची पाउडर है, फूड कलर है, आपको अगर चाहिए तो कम मात्रा में ले थोड़ा सा। और लौकी को तैयार करने के लिए सबसे पहले उसको धोकर छील ले, छीलने के बाद चक्कर जरूर देख ले, कड़वी तो नहीं है चलेगा,
1: जरूरी है,
0: कड़वा हलवा खा रहे हैं हम। अब लौकी को मोटे कद्दूकस से, महीन नहीं, मोटे कद्दूकस से कद्दूकस कर ले। कद्दूकस तभी करें जब हलवा बनाना, वरना लौकी काली पड़ सकती है। हाथों हाथ करना है। लौकी को भूने एक भारी तेल की कढ़ाई में 1-2 चम्मच देसी घी गरम करें। इसमें कद्दूकस की हुई लौकी डालें और मध्यम आंच पर पकाएं 5-7 मिनट तक। इसका पानी सूख जाना चाहिए। दूध डालकर पकाएं। भुनी हुई लौकी में गर्म दूध मिलाएं, इसे मध्यम तेज आंच पर पका लें। जब तक दूध पूरी तरह सूख नहीं जाए, लौकी अच्छी तरह गल नहीं जाए, बीच बीच में चलाते रहें, हलवा नीचे नहीं लगना चाहिए। चीनी, फूड कलर और मावा मिलाएं। जब दूध सूख जाए तब इसमें चीनी और मावा डाल दें। चीनी डालने के बाद मिश्रण थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, इसलिए इसे गाढ़ा होने तक फिर से थोड़ी देर पकाएं। ड्राई फ्रूट्स डालें, इलायची डालें, अंत में घी में हल्के हुए तले हुए ड्राई फ्रूट्स डालें और स्वादिष्ट और रसीली लौकी का हलवा आपको तैयार मिलेगा। इसे घी से ग्रीसिंग की हुई थाली में डालकर चाकू से काटकर चौरस टुकड़ों में कर लें ताकि वो चक्की का आकार दे दे और गर्मा गर्म परोसे। स्टोर करने के लिए आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं और ठंडा भी खा सकते हैं।
1: और इसी तरह एक साथी ने इसी तरह जैसा हलवा बनाया वैसे ही खीर बनाने की भी रेसिपी लिखकर भेजी। जैसे हलवे को हम बहुत ज्यादा सुखा लेते हैं तो इसको ज्यादा सुखाए नहीं तो उसकी खीर बन सकती है।
0: यहाँ पर ये हो सकता है कि लौकी को थोड़ा महीन कद्दूकस कसले है ना, ताकि लौकी खीर में कन्वर्ट हो जाए, है ना।
1: और जो हमने जो आपने हलवा की रेसिपी बताई उसे और ज्यादा सुखा लिया तो उसकी बर्फी भी बहुत अच्छी बनती है।
0: कई बार क्या होता है, माए इडली बनाती है ना, उसमें भी लौकी डाल देती है ताकि बच्चों को
1: सांभर में
0: भी है। जब इडली हम बनाते हैं ना तो कद्दूकस की भी लौकी उसके अंदर भर देती है ताकि जो इडली भी खाई जाएगी
1: पौष्टिक
0: लौकी भी जेब में पहुंच जाएगी बच्चों के। ये चालाकियां माँ को करनी पड़ती है।
1: पराठे बनाती है, पकौड़ी बनाती है और ना जाने कितने कितने तरीके से दलिया में डाल देगी, खिचड़ी में डाल देगी, सांभर में डाल देगी, पर बच्चों को लौकी खिलाकर ही छोड़ती है।
0: इसलिए लौकी एक और उसके रूप अनेक है ना।
1: और अब दाना
0: बिल्कुल

0: तो सोनाली हमारे श्रोता तो हमसे खींचे भी नहीं है,
1: और अगर कोई लौकी का हलवा लौकी के व्यंजन खिला देंगे तो कोई कैसे खींचेगा।
0: वही तो हमने कहा, वो खींचे भी नहीं है। लेकिन हाँ, उन्हें ये पता है कि अब जो है हम आगे और उनके साथ गुफ्तगू नहीं कर सकते हैं। तो कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी और
1: सोनाली पाठक का
0: प्यार भरा नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं टीवी और फिल्म अभिनेता संजीव शर्मा से जी शाम की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार। आज हमारे स्टूडियोज में एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत यहाँ पर उपस्थित है और उनका अनुभव और खास करके जो रेडियो के साथ इनका संबंध है, हमारी जो पहले बातचीत हुई है उसमें, तो ये बिल्कुल साबित होता है कि ये हमारे जितने श्रोता सुन रहे हैं ये आप ही की तरह हैं, आप में से ही निकले हैं, और जब आपसे मुखातिब हैं तो निश्चित रूप से आपकी अपनी बात ही कहेंगे। और जहाँ तक इनके काम की बात है तो बातचीत में आगे आपको पता चलता ही रहेगा। जैसे ही आपको इनका काम पता चलेगा तो इनका चेहरा भी आपके सामने नज़र आ जाएगा, और वो चेहरा इतना खूबसूरत है जो आप हमेशा देखना भी पसंद करेंगे और साथ ही साथ आने वाले दिनों में भी इन्हें आशीर्वाद भी देंगे और एक दर्शक के रूप में इनके साथ हमेशा बने रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम जो है श्री संजीव शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्टूडियोज में स्वागत करते हैं।
2: थैंक यू सो मच श्याम जी, थैंक यू सो मच विविध भारती, ईच एंड एवरीबॉडी, और आप जितने सभी लोग हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मेरी कई सालों की मुराद पूरी हुई। शाहरुख खान सर ने अपनी फिल्मों में कहा है कि किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि सारी कायनात मजबूर हो जाए वो आपको देने के लिए। तो टीवी फिल्म वेब सब करने के बाद एक तमन्ना ये थी कि रेडियो पे काश एक बार मौका मिले मुखातिब होने का। तो आज ऊपर वाले ने शायद मेरी वो प्रार्थना सुन ली। मिस्टर नितिश अरोड़ा से मेरी मुलाकात हुई फेसबुक पर, उन्होंने पूछा मुझसे कि आप रेडियो करना चाहेंगे, मैं कहा हाँ बिल्कुल, अरे वाह क्या बात है, आपने मेरे दिल की बात कह दी। तो फिर बातें आगे बढ़ी और आज मौका है कि आज मुंबई विविध भारती में मैं यहाँ पे बैठा हूँ और आप सभी टैलेंटेड लोग हैं, खूबसूरत लोग हैं, उन सबके बीच में मैं बैठा हुआ हूँ और आज मेरा इंटरव्यू है, तो बहुत ही स्पेशल फील कर रहा हूँ, बहुत ही अलग महसूस कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मन में एक द्वंद्व चल रहा था, कुछ चीज़ों को लेकर चलता है, सभी की लाइफ में चलता है, लेकिन आज यहाँ आकर मैं इतना फ्रेश महसूस कर रहा हूँ कि एक दिन होगा कि जब ये प्रोग्राम आएगा तो मैं अपने कानों से अब सुनूंगा कि विविध भारती संजीव शर्मा यानी मैं ईश्वर का बंदा है, जो एक फैमिली मैन है, जो अपने गुरु का भक्त है, जो अपने दोस्तों का दोस्त है, और जो अपने प्रोड्यूसर्स, अपने डायरेक्टर, अपने को एक्टर्स का यार है, दोस्त है। तो आज वो यहाँ बैठ के अपनी आवाज़ कोशिश करेगा कि अच्छे से एक मैसेज, अच्छे से अपने बारे में कुछ बातें, कुछ अच्छे संगीत, कुछ म्यूजिक, कुछ गाने, तो यहाँ पे एक मौका मिला है उसको पेश करने का। और थैंक यू श्याम जी, आपके सामने बैठने की हिम्मत कर पा रहा हूँ, इतनी खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं कि मुझे लग रहा है मैं रेडियो पर बैठा हुआ हूँ और मैं सामने से बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भारती को इतने प्यार से आपने याद किया है और आज साथ भी मिल गया है विविध भारती का।
2: विविध भारती की एक लाइन मुझे भी मैडम होता है कि सुरीली धड़कन, जब से पैदा हुए हैं सर कानों में वही आवाज
1: जी,
2: वही आज भी याद है कि हवा महल का म्यूजिक, सैनिक भाइयों के लिए प्रोग्राम जयमाला, छाया गीत
1: जी,
2: और कृषि भाइयों के लिए प्रोग्राम, तो ये सब चीजें जो हमारे कान में बचपन से ही, जैसे कहते ना कि गुरु कुछ मंत्र कहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो आवाज जो है ना रेडियो की, स्पेशली विविध भारती की, तो आज भी उन लोगों की आवाज कहीं ना कहीं मन में घूमती रहती है। और पेश है सैनिक भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम, ये तो मरने के बाद ही खत्म होगा, लेकिन जब तक जीवित हैं मेरी उम्र के लोग हैं या मेरे से बड़ी उम्र के लोग हैं या वो लोग जिन्होंने विविध भारती को सुना है अब तक, क्योंकि अब तो काफी चेंजेस हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता सर कि ये ऐसी चीज है जो आप कभी आसानी से भूल पाएंगे। और आज वहीं उसी जगह पर बैठकर, उसी स्टेशन पर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी किस्मत है कि मेरी यहाँ बैठकर मैं बोल पा रहा हूँ, बोलने की हिम्मत जुटा पा रहा हूँ।
1: क्या बात है। तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि आपके पुराने दौर को याद करने की कोशिश करते हैं, करवाने की कोशिश करते हैं। ये सफर जो यहाँ तक पहुँचा है आपका, जाहिर है हर तरह से कभी अड़चने भी आती हैं, कभी कई लोग मिल जाते हैं, जो पूरी कायनात मिल जाती है, जैसा भी आपने कहा, वो चीज दिलाती है, वो आपका जो सोचा हुआ काम है वो दिलाता है, जो सोची हुई बात है वो करने के लिए आपको सहयोग देता है। तो शुरुआत कैसे हुई? अच्छा, जन्म से करते हैं शुरुआत अगर करनी है तो बिल्कुल, कहाँ जन्म हुआ आपका?
2: सर मेरा जन्म हुआ गाजियाबाद में, जो यूपी है, दिल्ली एनसीआर में आता है, तो वहाँ मेरा जन्म हुआ।
1: और पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई आपकी, बचपना कहाँ बीता आपका?
2: बचपन सर गाजियाबाद में बीता, बेसिक शिक्षा भी वहीं हुई 8वीं तक। उसके बाद मेरे पापा जो बैंक में थे, उनके ट्रांसफर होते रहते थे, तो फिर मौका मिला उनके साथ विभिन्न शहरों में जाने का, वहाँ की स्कूलों कॉलेज में पढ़ने का। उसके बाद मैं वापस आया गाजियाबाद, मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की,

0: फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की।
1: किस विषय में किया आपने?
0: सर मैंने बीकॉम किया था, एक सपना देखा था कि सिविल सर्विस करने का, उसके लिए फिर मैंने एमए हिस्ट्री ज्वाइन किया, फिर हिस्ट्री को अध्ययन किया पूरा, एग्जाम दिए, सब कुछ किया, बट समहाउ क्या होता ना, राहें आपकी अलग अलग लिखी होती, लेकिन मलाल नहीं है कि हाँ मैंने ये नहीं किया, हाँ
1: नहीं,
0: मैंने किया।
1: इतिहास की आपने जब बात की है तो आपके जितने सीरियल्स हैं जो धारावाहिक हैं वो ऐतिहासिक न भी कहें तो पौराणिक तो है ही, पुरानी चीजों से जुड़े हुए, जो आपको पसंद था आपने वो एग्जाम के लिए तैयारियों के लिए किया था जरूर, लेकिन वो आपके अंदर था और वो आपको मिलना था, तो वो दूसरे किरदारों के रूप में, माइथोलॉजी के रूप में, एक स्क्रीन पर जो है घर घर पहुंचने के रूप में आप तक पहुंचा है।
0: आपने मेरी बात को बिल्कुल सही पकड़ लिया एकदम, कि वो कहता है ना समथिंग हैपन फॉर समथिंग,
1: बिल्कुल
0: कुछ होता है किसी चीज के लिए, तो वही शायद जिंदगी में लिखा था। क्या लोग उनसे पूछते हैं कि क्या आपको फर्क लगता है कि सोशल सीरियल में और माइथो में डिफरेंस क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, किसी जर्नलिस्ट सर ने पूछा था मुझसे, तो पता नहीं कहां से मेरे अंदर एक आंसर आया कि सर क्या होता है कि जो सोशल सीरियल होते हैं ना उसमें सोशल लाइफ हम जो जी रहे हैं वही कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम माइथो करते हैं और जब हम उस यूनिफॉर्म उस ड्रेस को पहनते हैं उस गेटअप में उस मुकुट में उस महल में होता है एक अपीयरेंस ऐसा होता है कि उससे हम लगता है कि यार ये चीज जो मुझे अभी फील हो रही है ये चीज रियलिटी में कैसी होगी, शायद ऐसी ही होगी, तो एक अलग ही युग में चले जाते, एक अलग ही माहौल होता है माइथो, मतलब एक पुराना भक्ति में एक माहौल होता है कि यस सामने प्रभु खड़े हैं, ये खड़े हैं, नारद जी खड़े हैं, वी आर डिस्कसिंग एन ऑल, पार्वती जैसे मैंने भी शिव शक्ति मैंने किया था तो पार्वती डॉटर का किरदार उन्होंने किया, तो वो एक अनुभूति अलग होती है सर वो माइथो करने की, वो बहुत पेनिंग भी होता है, आपका जो कॉस्ट्यूम होता है बहुत कभी चुभ रहा होता है, कोई कुछ हो रहा होता है, गर्मी होती है, कई बार एसी नहीं चल रहा होता, लेकिन फिर भी आप एक मुस्कान के साथ वहाँ खड़े होते हैं और अपनी मतलब अदाकारी को वहाँ निभा रहे होते हैं, और जैसे ही कट होता तो आप एक ओहो ये चुभ रहा
1: है, जैसे लेकिन आपकी मुस्कान जो है ईश्वरीय है, बिल्कुल आप उसी तरह से मुस्कुराते हैं। अच्छा ये बताइए कि सामाजिक जो है फिल्में हो या फिर धारावाहिक, तो जो समाज में घट रहा होता है हम स्वयं भी उसे देखते हैं, उसके साथ में वाबस्ता होते हैं हम, तो हम उन किरदारों को कर सकते हैं, लेकिन जो किरदार देखे नहीं है, माइथोलॉजी के जो किरदार हैं वो जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो देखे हुए नहीं रहते, तो उन्हें करने के लिए कैसी अलग से तैयारी क्या करनी पड़ती है, क्या भाव आता है? अगर आप शिवजी का पार्ट कर रहे हैं किसी एक धारावाहिक में, तो शिवजी की तरह फील करना, शिवजी की तरह दिखना, वो तो मेकअप से और वगैरह जो पहले से हमारे पास छवियां हैं उन छवि के आधार पर, लेकिन जब आप परफॉर्म करते हैं तब क्या डिफरेंस रहता है, आपको क्या लगता है तब?
0: इसका जवाब मैं आपको ऐसे देना चाहूंगा श्याम जी, के जब हम एक पुलिस वाले का करेक्टर करते हैं, अगर हम कोट पैंट पैंट शर्ट पहने तो हमारे वो एक फीलिंग अलग होती है, जब वो यूनिफॉर्म हम लोग जो पहनते हैं तो वो जो फील आता है ना वैसा ही फील आता है जब आप माइथो में एक कैरेक्टर का कॉस्ट्यूम है, एक माहौल है। और मेरे साथ तो सर ये थोड़ा सा मतलब मेरा गुड लक ये रहा है कि मैं एक धार्मिक परिवार में पैदा हुआ हूँ और काफ़ी विषयों की मेरी जानकारी भी है अपने धर्म के बारे में भी, हालांकि मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन क्या होता है आप बचपन से जिस माहौल में रह रहे होते तो उसमें आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता जानने के लिए, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं, देखी होती हैं, आपने फोटोग्राफ देखे होते, आपको पता हाँ यार ऐसी होगा, लेकिन जब आप उस गेटअप को उस करेक्टर को धारण करते हैं पता नहीं क्यों आई डोंट नो कि वो एक ऑटोमेटिकली आपकी जो शैली है जो आपका जो एक मन है ना मैं उसको एक शब्द कह दूं कि आपका ना एवरीथिंग गेट चेंज यू नो हर चीज बदल जाती है और वैसे ही बिहेव करने लगते हो, क्योंकि आपको बस उस गेटअप निभाने की एक जिम्मेदारी होती है कि नहीं यार मैं इसके साथ एक न्याय करने वाला हूं, मतलब मैं इसको धारण किया हुआ है, एक एक्टर का पूरी कोशिश होती है कि वो जो अपने व्यूअर्स हैं उनको जो देखने वाले हैं उनके साथ वो न्याय कर सके,
1: बिल्कुल
0: तो उनको लगे हाँ यार ये आदमी बिल्कुल मतलब महादेव लग रहा है या मतलब भगवान विष्णु के रूप में, या मेरी अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी एक्टर उस कैरेक्टर को करते हैं उन सबकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उसके साथ ऐसा न्याय करें धूमिल ना हो जो है,
1: ये जिम्मेदारी बड़ी होती है,
0: बहुत बहुत बड़ी
1: और
0: होती है।
1: सामाजिक फिल्में जो हैं या जो दूसरी कमर्शियल फिल्में आती हैं या धारावाहिक आते हैं उसमें आपका मैनरिज्म भी काम करता है,
0: एग्जैक्टली
1: आपका अपना अंदाज भी काम करता
0: अंदाज
1: है
0: काम,
1: आप... और उसमें आप थोड़ा इनोवेटिव भी हो सकते हैं और होते भी हैं, लेकिन इसमें आपके पास में वो छूट नहीं होती,
0: वो बिल्कुल नहीं होती सर, कोई इम्प्रोवाइजेशन का कोई चांस ही नहीं होता कि अगर ऐसे लिखा है तो ऐसे ही श्लोक जो है
1: जी जी,
0: अगर आपको संस्कृत में बोले तो श्लोक को आप श्लोक की तरह ही बोलेंगे,
1: बिल्कुल
0: आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आप उसको इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते,
1: नहीं कर सकते अलग अलग अंदाज में, नहीं कह सकते
0: जी जी। जैसे मेरा करेक्टर था भगवान वाल्मीकि का रामसिया के लवकुश में, कहानी स्टार्ट होती है सेकंड एपिसोड से मेरे ही आश्रम से,
1: अच्छा।
0: जब सीता जी एंटर करती हैं जंगल में और मैं उनको लेने जाता हूँ, तो उससे पहले उन्होंने एक भगवान वाल्मीकि की कथा बताई है
1: जी।
0: हम जब शूट कर रहे थे उसको, तो उसका प्रोमो शूट कर रहे थे, उसमें उन्होंने मुझे एक श्लोक लिख के दिया। वो श्लोक था पहली बार जब भगवान वाल्मीकि ने पहला जो संस्कृत श्लोक बोला था, तो वो मुझे पढ़ने को दिया। और सर एक एज एन एक्टर एक जिम्मेदारी ये होती है कि वो श्लोक जैसा है उसको वैसे ही पढ़ा जाए, उसका उच्चारण वैसे किया जाए। तो उसके लिए मैंने कम से कम नहीं तो सर 100-150 बार उसको पढ़ा। मेरी वाइफ ने मुझे पूरा उसका जो एक एक प्रोनाउंसिएशन है वो मुझे रिकॉर्ड करके भेजा। बाकी लोगों से मैंने उसकी रिकॉर्डिंग मंगाई कि इसको बोला कैसे जाए, फिर मैंने उसको कॉपी करके या उसको समझ के तब मैंने वो शॉट दिया। भगवान वाल्मीकि का पहला श्लोक था जो संस्कृत में निकला था, वहीं से श्लोकों की शुरुआत हुई थी ऐसा माना जाता है।
1: क्या बात है। चलिए शुरुआत तो हमारी भी हो गई है बातचीत की, लेकिन हमारे अपने कार्यक्रम में आप सुनते हैं कार्यक्रम, आपको पता है कि इस कार्यक्रम में बातचीत के साथ साथ हम आपकी पसंद के गाने भी सुनते हैं और सुनवाते हैं।
0: जी जी।
1: तो बताइए कि इस मौके पर कौन सा पहला गीत होगा, उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका पहला धारावाहिक कौन सा था, ये पहला जो स्टेज का या जो भी परफॉर्मेंस का जो मंच था आपका वो कौन सा था, वो हम बात में करेंगे।
0: जी जी।
1: फिलहाल पहला गीत इस कार्यक्रम का कौन सा होगा जो अपने श्रोताओं को आप सुनाना चाहेंगे?
0: सर मुझे ना पुराने गीत बहुत पसंद है, वो पुराने नहीं है वो आज भी नए हैं बेसिकली।
1: बिल्कुल।
0: तो जो पहला सॉन्ग है जो मैंने सुना जब मुझे समझ हुई थोड़ी सी, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ के, कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो।

0: संजीव शर्मा जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है विविध भारती के स्टूडियोज में। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम बात करेंगे आपके पहले परफॉर्मेंस की, जो पहला परफॉर्मेंस था वो कहाँ पर और कैसे, और इस क्षेत्र में जो आपकी रुचि हुई वो किस तरह से हुई।
1: सर, मेरा मानना है कि कुछ चीजें ना सब लोगों में बचपन से होती हैं। हर कोई आदमी गाना गाना चाहता है, गाना से लेकिन गुनगुनाता जरूर है। एवरीबडी इज एन एक्टर। हम घर पे छोटी मोटी एक्टिंग करते रहते हैं, कभी पेट में दर्द हो गया, बचपन में करते थे। तो एक्टर तो हम सभी हैं, और सिंगर भी हम सभी हैं, और डांसर भी हम सभी हैं। तो ये कुछ विधाएं हैं जो हमेशा से, हम ड्राइंग भी बनाते थे, हम जादू भी दिखाते थे, तो कुछ विधाएं हैं जो बचपन से रहती हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो वो कहता है ना, एक लिखा होता है कि आपकी लाइन की आपको कहाँ जाना है, विधाता ने डिसाइड करके भेजा होता है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो आप उसी राह पे चलते हैं, आप कई जगह उधर भटकते हैं, लेकिन अंत आप नहीं पहुंचते हैं जहां आपको जाना होता है। ये सत्य है जीवन का। मैं भी चाहता था सर, लेकिन शुरुआत ऐसे हुई सर कि मैं जब 8th में था, उससे पहले हम सब करते रहते हैं एक्टिंग डांस वन सब। तो जब मैं 8th क्लास में था तो हमारी एक टीचर हैं, अभी भी हैं, बलबीर कौर जी, उनका नाम मैं लेना चाहूंगा स्पेशली, क्योंकि वही जो कहते हैं ना, कीड़ा जो उन्होंने डाला दिमाग में, वो ही

0: अच्छा, ये जो अच्छे काम जितने होते हैं उसके बीच में ये कीड़ा कहाँ से आ जाता है?
1: अरे एक कहावत है ना कि
0: रुचि जगाई,
1: कि मतलब हाँ मतलब रुचि जगाई या किसी ने पिंच किया या किसी ने मतलब
0: उस ओर प्रेरित
1: आपको चूज किया, तो वो एक आम भाषा में बोलते हैं कि कीड़ा।
0: हाँ नहीं, बड़ा अच्छा है ये कीड़ा,
1: तो अच्छा रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो सर वो हमें कॉमर्स पढ़ाया करती थी और बहुत ही स्ट्रिक्ट थी वो, और उनको देख के मतलब सामने मतलब पैर कांपने लगते थे। शैतान तो हम शुरू से थे।
0: नहीं, काम अभी तो नहीं है ना,
1: अभी भी कभी कभी मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति को शैतान होना चाहिए। तो काम ने करना, कुछ ना करना, सजा मिलती रहती थी, कभी हैंडसअप कर लो, कभी कुछ कर लो। हमारे स्कूल में एक 26 जनवरी को एक कुछ प्रोग्राम होते हैं ना स्कूल में, जैसे होते, तो प्रोग्राम का आयोजन हो रहा था, तो मैडम जो है बलबी मैम वो एक नाटक का मंचन कर रही थी, निर्देशन कर रही थी उसका। नोबडी वाज इंटरेस्टेड बेसिकली, तो वो उनको पकड़ पकड़ खींचना पड़ा। तो मेरी क्लास में आई, देखा ऐसे करके, अच्छा ए यू संजीव शर्मा कम आउट, क्या हो गया, आउट आउट। देखा बहुत सारे 10-12 लोग जो लाइन में खड़े हो गए, क्या चल रहा है, ऑडिशन चल रहे हैं, अच्छा लाइन बोल के दिखाओ। हमने एक लाइन बोली, अच्छा ठीक है तुम रुक जाओ, जो अच्छे लगे उनको रख लिया, बाकी को भेज दिया। हम एक नाटक कर रहे हैं बहू की विदा, उसमें ऐसे ऐसे दहेज के ऊपर कहानी है और तुम्हें लड़की का भाई बनना, तुम्हारी एक ही लाइन है। ओके मैडम, करता क्या ना करता, रिहर्सल शुरू हुई सर, वो एक लाइन करते करते करते करते पता नहीं, आई डोंट नो, वो जो मेन रोल था ना, जो एक बुजुर्ग है जो ससुर का करेक्टर कर रहे थे, तो उनका बहुत बड़ा रोल था। वो करते करते पता नहीं क्या हुआ, मैडम बोली ससुर का रोल आप करोगे। मैंने कहा मैडम मतलब ये क्या, ये हो नहीं सकते, तो मतलब मैं तो एक लाइन के लिए आया था। नहीं नहीं नहीं नहीं, अब तो ये तुम ही करोगे। पता नहीं उन्होंने मुझे क्या देखा, आई डोंट नो सर। वो 8th क्लास में मैंने एक बुजुर्ग का करेक्टर किया जो दहेज का लालची होता है, पूरे बाल वाल सफेद करके, मूछ वूछ लगा के, सब अरेंजमेंट करके, और बहुत प्रशंसा मिली सर। डर भी बहुत लगा, पैर कांपते थे, लेकिन वो मैडम का चेहरा देखते बिल्कुल नहीं भाई, मैडम यहाँ मैं वो नहीं सकता, लेकिन आई एम सो सॉरी, बट वो आपका ही प्यार था जो आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आपकी गाइडेंस थी। वो बहुत अच्छा लगा सर, सबको बहुत अप्रिसिएशन मिला, मार्क्स भी अच्छे मिले। उसके बाद 3-4 साल तक मतलब 9th, 10th, 11th, 12th तक कोई वो नहीं था, लेकिन मन में था कि नहीं यार, जब फिल्में देखने जाते थे कि तो मेरे फ्रेंड्स लोग बोलते थे, क्योंकि मैं अलग बैठता था, मैं आज भी सच में फिल्म देखने तो मैं किसी के साथ नहीं बैठता हूँ, मैं अकेला बैठ बहुत गौर से फिल्म देखता हूँ। तो मेरे फ्रेंड्स कहते थे पंडित जी तुम तो सोच रहे होंगे कि अगर मैं होता तो कैसे करता। मैं एग्जैक्टली मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ होता तो मैं कैसे कर रहा हूँ,
0: क्या बात।
1: तो वो धीरे धीरे धीरे धीरे वो चीज़ें हो गई, फिर लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई कि मतलब शादी हो गई, फिर क्या हो गया,
0: तो सब अच्छा हुआ ना,
1: सब अच्छा हुआ। वो नहीं होता सर आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता।
0: हाँ ये बात सही है।
1: उन सबकी प्रेरणा से, उन सबके सपोर्ट से एक दिन मौका मिला मुंबई आने का। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे तैयार किया इसके लिए, एक साल पहले तैयारी कराई, मतलब मेरा वेट लॉस, मेरा लुक वगैरह सब एवरीथिंग चेंज, मेरा फोटोशूट वगैरह। तो फिर मैंने एक कदम रखा सर, पूरी हिम्मत जुटा के, मैं छुट्टियों में आता था, आई वाज डूइंग जॉब बेसिकली, छुट्टियों में मैं आता था, ऑडिशन देता था, लुक टेस्ट देता था। पहला जो मुझे सीरियल मिला उसका नाम था 2 हंसों का जोड़ा, और बेसिकली दैट वाज अ कैमियो करेक्टर। तो जब मैं आया था मुझे ये नहीं पता था कैमियो क्या होता है या मेन रोल क्या होता है या ये क्या, तो ये तो पता लगा। तो मेरे को जो प्रोडक्शन से कॉल आया, राष्ट्रीय प्रोडक्शन का वो पहला सीरियल था मेरे लिए, उन्होंने मुझे कॉल किया, बोले जी जी आप कैमियो करते हैं क्या? मैंने कहा वो क्या होता है? बोले मतलब ये कुछ दिनों का काम होता है और एक इंपॉर्टेंट करेक्टर होता है। मैंने कहा टीवी पे आएगा ना? बोले हाँ बिल्कुल। मैं कहा तो ठीक है मैं करूंगा। तो इसने समझ नहीं थी कि मतलब क्या होता है, ठीक है एक बार आना दिखना है क्या होता है। तो वो 2-3 दिन का काम था, शायद वो हफ्ते भर पूरा चला, वो पूरा सिक्वेंस था। एक जो डांस कॉम्पिटिशन का जज होता है, जो विलेन होता है, वो मैंने करेक्टर किया, वो हफ्ते भर चला सर, बड़ा अच्छा लगा करके, बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली, पैसे भी मिले। फिर उसके बाद एक और ऑडिशन मैंने देने गया, तो विक्रम भट्ट जी की फिल्म थी हॉन्टेड करके, तो बहुत छोटा करेक्टर मतलब ठीक है, लेकिन मेरे लिए बड़ी बात कहती सर, मेरे लिए करेक्टर से मायने नहीं था, मेरा था कि मैं उन लोगों के बीच में बैठा हुआ हूँ जिनको मैं देखता था कि यार ये लोग टीवी पे आते हैं या ये लोग ये काम करते हैं, वैसे ही जैसे आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ विविध भारती में, और मैं आप सब लोगों को सुनता हूँ, पहले भी और लोगों को सुनता था, तो मैं ये सोचता यार ये लोग कैसे काम करते, तो आज मुझे पता लग रहा है कि ऐसे काम होता है। तो वही फीलिंग मेरे लिए तब थी, आप डायरेक्टर के सामने बैठे हो, आप एक्टर्स के सामने बैठे हो, वो चीज़ कैसे हो रही है, शॉट कैसे ले रहे हैं, डायलॉग कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें ना मेरे लिए वो लर्निंग पीरियड था। जब मैं पैसे या मेरे लिए करेक्टर कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में था, तो बस मैं वापस जाता जॉब करता, जब छुट्टी मिलती तो मेरी टिकट ऑलरेडी बुक रहती, मेरी फैमिली कहती थी कि यार अब छुट्टियों का टाइम आया हुआ है, अब तुम बॉम्बे चले जाओगे, ये भी एक फेज था। फिर धीरे धीरे करते करते मैंने शिफ्टेड टू मुंबई, और उसके बाद फिर कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ी। वो जब आप पूछेंगे कैसे तो मैं बताऊंगा फिर।
0: हाँ मैं पूछूंगा जरूर आपसे, लेकिन अभी रोक दूंगा अपनी बात को।
1: जी जी,
0: क्योंकि मैं गाना पूछूंगा आपसे।
1: गाना सर एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, तेरे मेरे सपने। वो एक फैमिली की जो एक ड्रीम होता है ना कि जब आप आगे बढ़ते हैं, वो एक सपने बुनते हैं, उस पर जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती है, और जब वो सपने पूरे हो जाते हैं तो एक ही रंग हो जाता है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, सबका लक्ष्य ये है कि हम उस सपने को पूरा कर लें। तो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है।

0: श्रोताओं, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, जहां पर बातचीत कर रहे हैं एक्टर संजीव शर्मा जी से। संजीव जी अपनी बातें बता रहे हैं, बड़े ही प्यार के साथ बता रहे हैं, और उसी प्यार को आगे लिए चलते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: संजीव जी, फिर जब आपको ऐसा लगा कि ये रोल मेरा जो है पहला रोल, मैं इसको मान सकता हूँ जिसमें आपने थोड़ा बड़ा किरदार निभाया हो, ऐसा कोई धारावाहिक?
1: सर, मेरे चार ऐसे सीरियल हैं जिनको मानता हूँ कि वो एक मार्क है मेरी लाइफ के लिए अभी तक। और सबसे बड़ी बात है सर कि वो जो चारों सीरियल हैं मुझे सेम प्रोडक्शन ने दिए।
0: अच्छा,
1: ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं शुक्रगुजार करता हूँ सिद्धार्थ तिवारी सर का, अमोल जी का, राहुल तिवारी सर का, ये जिनके प्रोडक्शन ने मुझे चार बड़े सीरियल दिए सर। बाकी उससे पहले मैं काम कर ही रहा था, लेकिन वही 3 मंथ्स 6 मंथ्स मतलब ठीक है, लेकिन वो जो सीरियल हुआ जैसे राधा कृष्ण, बहुत फेमस सीरियल था सर स्टार भारत का, तो उसमें मेरा करेक्टर था अकरू जी, बेसिकली कंस के सेनापति होते हैं।
0: अच्छा।
1: और विलन साइड में हम दो ही लोग थे, कंस और अक्रूर।
0: अच्छा।
1: और दूसरी साइड पे भगवान कृष्ण, बलराम जी एंड सो ऑन। ये भी मुझे एक्सीडेंटली मिला, मतलब पहले कोई और कलाकार कास्ट हो

0: थे, फिर कुछ हुआ, फिर मेरी एंट्री हुई उसमें दोबारा थे, बट मैं बहुत विलिंग था उसको रोल को करने के लिए।
1: राजस्थान
0: उनका कई जगह वर्णन आता है, तो मुझे लगा ये नेगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन शुरू में क्या होता है कि नेगेटिव होता है, नेगेटिव मतलब वो नेगेटिव नहीं है, बट वो इस जो राज सिंहासन है
1: जी जी
0: जिसपे कंस बैठे हुए हैं, इससे पहले उनके पिताजी बैठते थे, तो वो क्योंकि कृष्ण के नाना है और वो कृष्ण के मामा है, तो वो जो राज सिंहासन के प्रति जो मेरी आस्था है मैं उसको निभा रहा हूँ। कई बार क्या होता है आपका राजा कई बार गलत होता है, आप समझाने का प्रयास करते हैं जो आपका जो बॉस होता है, ऐसे मत करो प्लीज, लेकिन आप उसे बंधे हुए उससे, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि जब सब चीजें खत्म हो जाती हैं, खराब हो जाती है, फिर आप कहते हैं ठीक है मैं अब अपनी ड्यूटी करूंगा जो मुझे करना चाहिए। तो अक्रूर जो करेक्टर है वो उस सिंहासन से बंधा हुआ है, वो जो मथुरा का जो सिंहासन है वो उसके प्रति उनकी आस्था है और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। लेटर ऑन जब सब चीजें विफल हो जाती हैं, कंस पूरा प्रयास करता है कि भगवान कृष्ण को मार दिया जाए या कुछ भी कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो लेटर ऑन फिर सब दानव खत्म हो जाते हैं, सब असुर खत्म हो जाते हैं, तो अंत में अक्रूर ही बचते हैं।
1: अच्छा,
0: तो कंस उनसे बोलते हैं कि नाउ अब सब तो चले गए भाई, सबको कृष्ण ने खत्म कर दिया, अब दिस इज योर ड्यूटी, अब आप जाओगे और उन दोनों भाइयों को बंदी बना के लेके आओगे। अक्रूर कहते ओके नो प्रॉब्लम, हर मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, आप महाराज हैं। तो जब जाते हैं सर वहां पे मिलने, तो देखते हैं कि कृष्ण और बलराम बहुत छोटे बच्चे हैं, कहते यार ये इतने बड़े छोटे बच्चे और ये तो इंसानियत ही नहीं है। तो वो फिर भी प्रार्थना करते हैं कि भैया आपको एक वहां पे दंगल टाइप द्वंद्व युद्ध है वहां पे, तो महाराज कृष्ण ने आपको इनवाइट किया है। वो कहते हैं हाँ ठीक है चल, तो चलते हैं। उनका मन नहीं मान रहा होता, लेकिन वो बोला कुछ गलत कर रहा हूं मैं, तो कहते हैं कि यार मतलब आई एम सो सॉरी कि मतलब मैं आपको बता दूं कि वो बेसिकली आपको मारने की तैयारी कर रहा है, ये करता है, बट मैं नहीं चाहता कि आप जाएं। फिर वहां पर जो है भगवान कृष्ण को अपने विराट रूप दर्शन देते हैं कि मैं ये हूं, तो वहां पर अक्रूर की भावनाएं बदल जाती हैं, उससे पहले वैसे शुरू हो जाती है क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि इतने चमत्कार हो रहे हैं, तो कोई ना कोई शक्ति तो है, तो वो फिर कृष्ण में हो जाते हैं। तो फिर वो उनको क्रूर वॉज अ रीजन कंस को मारने की, जो भगवान कृष्ण बलराम को लेके जाते हैं और वहां पे फिर द्वंद्व युद्ध होता है, तो वहां पे कंस को मार दिया जाता है। तो ये एक करेक्टर जो मुझे बताया, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने किया।
1: कैसा प्रतिसाद मिला उस करेक्टर का आपको?
0: बहुत सर बहुत, मतलब मुझे इतना फेम मिला कि जो अक्रूर के जो वंशज हैं उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो किया, मुझसे बात करते थे, मैं बहुत बड़ी बात थी।
1: हमारे श्रोताओं के लिए भी ये जो कथा है ये अनसुनी है, और इसके अलावा भी जो दूसरे तीन और हैं, चार थे,
0: एक रामसिया के लवकुश जो कलर्स पे था उसे मैंने लॉर्ड वाल्मीकि का कैरेक्टर किया
1: जी,
0: तो दैट वाज अ पैरेलल लीड कैरेक्टर। सीरियल की कहानी है कि जब सीता जी को वन में छोड़ दिया जाता है तो वहां पर वाल्मीकि जी उनको आश्रम में ले जाते हैं, वहीं पर लवकुश का जन्म होता है, तो इस कहानी वहां से स्टार्ट होती है। तो इट वॉज अ ब्यूटिफुल कैरेक्टर, वंडरफुल कैरेक्टर, एवरीथिंग वॉज गुड। मतलब उसमें सर मुझे इतना आई डोंट नो, अपने देश में तो मुझे पता नहीं लोगों ने बहुत अप्रोच किया, लेकिन मुझे इंडोनेशिया से, मुझे बाली से, जहाँ पर हिंदुज़म है जहाँ पर, वहाँ लोगों ने मुझे कॉन्टेक्ट किया, मुझसे बातें की, मुझे बहुत एडमायर करते थे, मेरे बहुत पोस्टर बना के बेचते थे, और उसके बाद गुरु पूर्णिमा पे जो है मेरे पीछे सॉन्ग लगा के उसको एक रील बना के बेचते थे, तो देट वॉज एन स्पेशल फीलिंग फॉर मी।
1: तो आपको ऐसा नहीं लगने लगा कि जब आप इस तरह किरदारों के बीच में रहते हैं, उन्हें निभाते हैं, इस तरह के सेट्स होते हैं, भावनाएं होती हैं, जो डायलॉग्स संवाद जो हैं वो भी उसी तरह के होते हैं, आपका माहौल पूरा का पूरा भक्तिमय होता है?
0: बिल्कुल सर।
1: तो एक तरह से तो ये आपके लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि एक व्यक्तिगत रूप से आपने जैसा कहा कि आप आस्था और विश्वास वाले व्यक्ति हैं,
0: जी जी,
1: तो आपके लिए तो अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे कहीं ये भाव बढ़ता हुआ जो एक्टिंग का जो कैरियर है उसमें कुछ बाधा तो नहीं बनता, क्योंकि आप उस रूप में ही दिखते हैं, तो कोई दूसरा कैरेक्टर जो है, एक अभिनेता भी आप हैं और आप अलग अलग किरदार करते भी हैं और करना भी चाहते हैं, जैसे कि अभी आने वाले सीरियल की बात हम करेंगे उसमें भी आपने किया है, तो ये जो छवि है जो आपके साथ में रहती है भक्तिपूर्ण छवि, ये नुकसान तो नहीं पहुंचाती?
0: देखिए सर, काम तो कभी आपको नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, आपका जो काम है जैसे आप शिद्दत से करते हैं, काम आपको चुनता है, आप काम को नहीं चुनते,
1: हम नहीं चुनते,
0: करेक्टर आपको ढूंढ रहा होता है। अगर आप बहुत सारी स्टोरीज बॉलीवुड की उठा के देखें कि पहले कोई करेक्टर कोई और करने वाला था लेकिन कोई और कर रहा होता है, जैसे आप गब्बर का अगर एग्जांपल लें, गब्बर वाज द बिगेस्ट कैरेक्टर ऑफ द बॉलीवुड, उसको पहले कई लोगों ने रिजेक्ट किया, फिर वो अमजद साहब के हिस्से में आया तो वो उनके लिए लिखा हुआ था। सेम एज ए जंजीर है, बहुत सारी फिल्में आप उठा के देखिए कि पहले किसी और को सुनाई गई थी लेकिन फिर किसी और ने किया, तो एक्चुअली रोल आपको, करेक्टर आपको ढूंढ रहा होता है। और आपको मिलता आप उसे करना भी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं द गुड साइन फ्रॉम द गॉड कि भाई ये आप ही के लिए है और आप ही करोगे।
1: इसके लिए खास बात ये है कि उस प्रक्रिया में बने रहना और उसके प्रति आपकी श्रद्धा भी होनी चाहिए काम के प्रति, और उस काम की निरंतरता भी बनी रहनी चाहिए। इसलिए आपको ये अलग अलग जो किरदार हैं ये मिलते हैं,
0: क्योंकि काम ही आपको ढूंढता रहता है।
1: ये बात तो है, और कुछ गीत भी हैं जो कभी आपको ढूंढते हैं कभी आप गीतों को ढूंढते हैं, तो ढूंढिए कोई अच्छा गीत।
0: इट्स अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग। क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है, ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं।

0: मिर्ज़ापुर में अच्छा काम लगा सर, अच्छा एक्सपीरियंस था करने का और बहुत अच्छे से शूट भी हुआ। आई होप कि आगे भी अच्छे अच्छा काम मिलता रहेगा।
1: बिल्कुल मिलेगा। और फिल्मों के बारे में भी कुछ बताइए, आपने कुछ छोटे बड़े किरदार किए हैं, कौन कौन सी फिल्में रही हैं?
0: फिल्मों का सर मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि जो भी व्यक्ति आता है मुंबई का, जो पहला प्यार होता है वो होता है फिल्में। हर आदमी यहाँ एक्टिंग मतलब फिल्में ही करने आता है। हाँ, मतलब शुरू से एंड तक फिल्में ही रही है ना, उसके बाद ये फिर टीवी आया, फिर सीरियल्स आए, नाउ इज टाइम ऑफ वेब सीरीज एंड ऑल। हर आदमी का एक चाह होती है दिल की कि मैं फिल्म जरूर करूँ, क्योंकि फिल्में ताओ उम्र तक याद रखी जाती हैं। सो मेरी बड़ी इच्छा थी, क्योंकि मैं भी फिल्में करने आया था। तो फिल्म की सर पहली फिल्म थी हॉन्टेड, बहुत छोटा करेक्टर था, आया और गया पता ही नहीं लगा। खैर एनीवे, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस विद द डायरेक्टर, विक्रम भट्टी की फिल्म थी, है बड़ा सीखने को मिला उसमें। फिर मैंने सर फिल्म की एक पद्मावत, पद्मावत में आई प्लेड अ ट्रांसजेंडर, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि बहुत ज़्यादा करेक्टर बचा नहीं उसमें। लेकिन एक्सपीरियंस ये था सर कि जो उसके क्रिएटर हैं, जो डायरेक्टर हैं संजय लीला बंसाल, उनके साथ खड़े रहना, उनको देखना, उनके काम का तरीका, उनके सेट्स, उनकी ज्वेलरी, वेशभूषा, म्यूजिक, जिस तरह से वो लोग काम करते हैं सर, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव था। एंड स्टैंडिंग विद दीपिका एंड शाहिद कपूर, तो ये एक अलग एक्सपीरियंस था। और मेरा ट्रांसजेंडर का उसमें करेक्टर था जो बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, मुझे अच्छा लगा। वन वीक मेरा काम चला उसमें, मेरा नाम उसमें हजूरिया करके एक करेक्टर मुझे दिया था उन्होंने। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू वर्किंग विद सच अ लीजेंड पर्सन, उनको देख के काम कर। तो मुझे किसी के साथ काम करने में डर नहीं लगा।

क्योंकि मैं इतने बड़े आदमी के साथ, इतने बड़े मास्टर के साथ काम कर चुका था, चाहे थोड़ा सा सही, लेकिन मुझे फिर उसका किसी के सामने डर नहीं लगता था। नहीं, ये तो हम कर ही लेंगे, ये तो हो ही जाएगा। फिर मैंने एक फिल्म की, सर वो भी एक्सीडेंटली मुझे मिली, उसका नाम था गुड न्यूज, अक्षय कुमार जी और दलजीत दोसांझ जी का, एक ऑडिशन दिया था। एकदम से कॉल आया कि आप फ्री हो क्या, शाम को यशराज जाना है। तो मैं पहुंच गया वहां पे, मेरा एक मॉक टेस्ट हुआ, बोले ठीक है कल से शूट है आपका, आप आइए। मैं पहुंचा सर, एक सीन है उसमें अक्षय पाजी और दलजीत जी का, एक फाइट सीन है रेस्टोरेंट में। आई प्लेड द मैनेजर, किया सर मैंने वो फर्स्ट डे।

0: और सर वो भी सीन मैंने किया, बड़ा अच्छा सीन था वो। मैं जब सिनेमा देखने गया उसमें तो लोग उस पर हंसे उस सीन पे, तो मुझे लगा नहीं यार रियली थैंक्स टू अक्षय कुमार सर के, अब उनके बिना ये सीन नहीं हो पाता। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था। फिर मैंने एक फिल्म की थैंक गॉड, उसमें भी एक सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड कुलप्रीत सिंह के बीच में करेक्टर है, लगा ही नहीं कि मैं मतलब कि इतने बड़े लोगों के बीच में मैं खड़ा हूँ कि मेरे तो बहुत बड़े सर वो।
1: लेकिन आप भी तो टीवी के स्टार हैं।
0: बड़े कलाकारों में सर मैंने ये देखा कि वो आपको इतना कंफर्ट देते हैं कि एक्चुअल सबका मोटो क्या होता है कि चीज को अच्छी बनाना, वो किसी की वजह से खराब नहीं होनी चाहिए और किसी का पता नहीं कौन कब कहां पहुंच जाए।
1: आपके पास भी अनुभव काफी है, आप भी इन बातों को अनुसरण करेंगे हम सोचते हैं सर।
0: देखो सर मैं आज भी करता हूं, मैं हमेशा करता हूं
1: और करते रहेंगे और अच्छा काम आपको मिलेगा, आपको पता है इस बात का यकीन आपको हमेशा रहता है।
0: बिल्कुल।
1: और बेहतर रूप में अलग अलग स्क्रीन्स पर, ओटीटी का हो, टेलीविजन का हो या फिल्म का हो, हम आपको देख पाएंगे, उसमें आपके अच्छे काम की प्रशंसा कर पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और आने वाले दिनों में जो भी आप करना चाहते हैं अपने जीवन में, उन तमाम बातों में आपको सफलताएं मिले, ऐसी कामना भी करता हूं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपनी बेहतरीन बातें, बेहतरीन यादें जो हैं हमारे श्रोताओं के साथ साझा की हैं, शेयर किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं एक छोटी सी बात बोल दूं?
1: जी जरूर।
0: कि जितनी बातें आपने की हैं, मैं ऊपर ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सारी बातें श्याम जी की सुन लें और उसे अप्लाई कर दें।
1: तो हम ऐसा करते हैं कि अभी फिलहाल एक बात आपकी और सुन लेते हैं, एक आपकी पसंद का गीत सुनते हैं और इसी के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे।
0: जी सर, दंगल सॉन्ग कि माँ के पेट से मरकट तक तेरी कहानी, दंगल दंगल, जिसमें हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने का, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हारना नहीं, आगे बढ़ते रहना है, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बट यू हैव टू डू।

0: रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जैगवार, हॉक और सुखोई 30 एमकेआई जैसे विमानों से दागा जा सकता है। ये लंबी दूरी से दुश्मन के हवाई ठिकानों को निष्क्रिय करने में सक्षम है। इस प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। इसमें 60% स्वदेशी सामग्री होगी। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इसके वायुसेना में शामिल किए जाने से उसकी परिचालन क्षमता बढ़ेगी। इससे देश की रक्षा तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के साथ त्रिपक्षीय बैठक में शामिल हुए। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य विज्ञान, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई। तीनों नेताओं ने संस्कृति और विरासत सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी कुछ वर्षों में बहुपक्षीय कर वार्ताओं में लिए गए निर्णय एक पीढ़ी के लिए सीमा पार कराधान को आकार देंगे। नई दिल्ली में ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक में उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं और उन्होंने महत्वपूर्ण घरेलू कर क्षमता का निर्माण किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन वार्ताओं को निष्पक्ष और स्थायी बनाने के लिए उनका दृष्टिकोण आवश्यक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मकुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को ऐसी युवा शक्ति की आवश्यकता है जो ईमानदारी, जिम्मेदारी, करुणा, सह अस्तित्व और देशभक्ति की भावना से प्रेरित हो।
1: युवाओं को सशक्त, सबल, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सबकी जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: इससे पहले राष्ट्रपति ने वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पिछले 12 वर्ष में 23,000 से अधिक पदोन्नतियों को स्वीकृति दी है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को काम के लिए एक बेहतर और अनुकूल माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे प्रेरित रहें और अपने दायित्वों को प्रभावी ढंग से निभा सकें। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले के रविवलसा के पास रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 4 विद्यार्थी मारे गए और एक अन्य घायल हो गया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री नायडू ने अधिकारियों से दुर्घटना के बारे में जानकारी ली और घायल विद्यार्थियों के बेहतर उपचार की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। एशियाई खेलों में रोशिबीना देवी नाउरूम वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलो के सेमीफाइनल में उन्होंने

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी फैसले पर अपने हितों और चिंताओं को दोहराया। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर के संदर्भ को खारिज किया, कहा इसका भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160

0: सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 800 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया। भाजपा ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र और करीब आया। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में तेज बारिश हुई। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। न्यूयॉर्क पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमेरिका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार बार दोहराने से ये वास्तविकता नहीं बदल सकती। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी।
1: ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला एक सटीक निर्देशित ग्लाइड बॉम्ब है। इसे जैगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। ये लंबी दूरी से दुश्मन के हवाई ठिकानों को निष्क्रिय करने में सक्षम है और इस प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। इसमें 60% सामग्री स्वदेशी होगी। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इसके वायुसेना में शामिल किए जाने से उसकी परिचालन क्षमता और बढ़ जाएगी। इससे देश की रक्षा तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@airnewshindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्म कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
3: युवाओं को संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: इससे पहले राष्ट्रपति वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पिछले 12 वर्ष में 23,000 से अधिक पदोन्नतियों को स्वीकृति दी है। डॉ. सिंह ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को काम के लिए एक बेहतर और अनुकूल माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन सहित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने हाल के महीनों में देशभर में 40 नई पहल शुरू की है और विशेष गहन पुनरीक्षण सहित कई चुनावी सुधार किए हैं। आयोग ने कहा कि उसके सभी अधिकारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के और तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पुनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का और अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। माई भारत प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत युवाओं की संख्या 3 करोड़ से अधिक हो गई है। वर्ष 2023 में शुरू किए गए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा सीखने, स्वयं सेवा, नेतृत्व, नागरिक भागीदारी और युवा केंद्रित गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची में इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ी रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। विशेष श्रृंखला में आज अटल इनोवेशन मिशन की।
4: अटल इनोवेशन मिशन, जिसे वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था, देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। नीति आयोग के अंतर्गत यह मिशन एक समग्र दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है। इसका उद्देश्य स्कूलों में समस्या के समाधान और नवाचार की सोच विकसित करना तथा विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, निजी क्षेत्र और MSME में उद्यमिता का एक सशक्त इकोसिस्टम तैयार करना है। वर्ष 2016 में आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से नई पीढ़ी को विज्ञान और अनुसंधान की ओर आकर्षित करने के लिए कदम उठाए हैं।
5: नई पीढ़ी में विज्ञान के प्रति आकर्षण, टेक्नोलॉजी के प्रति रिसर्च और इनोवेशन, और इसी के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए। और इसलिए तो मैं कहता हूँ लेटेस्ट एम टू इनोवेट। और जब मैं लेटेस्ट एम टू इनोवेट कहता हूँ तो मेरा एम का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इरादा है कि इस एम के द्वारा, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, पूरे देश में एक इकोसिस्टम तैयार हो। इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक सिलसिला चले।
4: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में स्कूल छात्र सार्थक गुप्ता ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से अटल इनोवेशन मिशन के अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है।
6: पिछले 3 वर्षों से अटल टिंकरिंग लैब्स का हिस्सा बनना मेरे लिए एक बहुत ही खास लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। इस दौरान मैंने सिर्फ नई टेक्नोलॉजीज नहीं बल्कि उन्हें प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना सीखा, नए आइडियाज पर काम करा और अपने हाथों से प्रोटोटाइप्स बनाए।
4: अटल इनोवेशन मिशन देश भर में नवाचार और उद्यमिता की एक जीवंत संस्कृति विकसित करने और उसको बढ़ावा देने का काम कर रहा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। इसके आज रात तट से टकराने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
7: एमडी ने दक्षिणी जिलों के लिए रेड वार्निंग जारी की है। कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी दी गई है। उम्मीद है कि डीप डिप्रेशन आज रात और कल सुबह के बीच कलिंगपट्टनम के पास से गुजरेगा और कोरापुट और रायगढ़ समेत दक्षिणी उड़ीसा के अंदरूनी इलाकों की ओर बढ़ेगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भुवनेश्वर में हालात का जायजा लिया और प्रशासन को पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया। कई संवेदनशील जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं, जबकि प्रभावित इलाकों में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरलम, माहे और मराठवाड़ा में भी तेज बारिश का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कल आंधी चल सकती है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में आज दो महिलाओं समेत तीन शीर्ष माओवादी कमांडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के अनुसार ये तीनों पिछले दो दशकों से अधिक समय से माओवादी आंदोलन में सक्रिय थे और कथित तौर पर लगभग 80 हिंसक घटनाओं से जुड़े हुए थे। सरकार पश्चिम बंगाल में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। प्याज लेकर चलने वाली कांदा एक्सप्रेस कल कोलकाता पहुंचेगी। त्योहारों के मौसम को देखते हुए ये कदम महत्वपूर्ण है। राज्य में मोबाइल वैन के जरिए करीब 1400 मीट्रिक टन प्याज वितरित किया जा चुका है। इनकी बिक्री 35 रुपए प्रति किलो की दर से की जा रही है। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले के रविवलसा के पास रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से चार विद्यार्थी मारे गए और एक अन्य घायल हो गया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री नायडू ने अधिकारियों से दुर्घटना के बारे में जानकारी ली और घायलों को बेहतर उपचार की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। जबरन गुमशुदगी के मामलों में कथित तौर पर वृद्धि हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर आंदोलन को दबाने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ है विशेष शुक्ला।
8: एशियाई खेलों में रोशोबिना देवी वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। मीराबाई ने 28 वर्ष का सूखा खत्म करते हुए भारत को पदक दिलाया।
9: बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि एशियन गेम्स में मेरा मेडल नहीं थे, पर आज फाइनली मुझे मिल गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद में काफी इंजुरी हुई थी तो यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होते। मैं इधर आके मैंने सिल्वर मेडल जीते तो इससे अच्छा खुशी क्या हो सकता है।
8: वहीं जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस के सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा। निशानेबाजी में स्कीट स्पर्धा में माहेश्वरी सिंह, परिणाज धालीवाल और राइजा ढिल्लों की महिला टीम और अनंतजीत सिंह नरुका, मेहराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। भारत एक स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदकों के साथ 13वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
0: प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी में इस वर्ष बिहार की सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं को दर्शाने वाले 65 स्मृति चिन्ह शामिल किए गए हैं। इनमें मधुबनी और मिथिला चित्रकला, सिक्की और मंजूषा कला, ऐतिहासिक व्यक्तित्व तथा राज्य से जुड़े धार्मिक स्थल शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने की अमेरिकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को दोहराया। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर के संदर्भ को खारिज किया, कहा इसका भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 800 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया। भाजपा ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र और करीब आया। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में तेज बारिश हुई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: Good evening. This is Akashwani. I am VC Pramod with the news at 9. The headlines. India reiterates its interests and concerns with the United States regarding act imposing tariffs on countries buying Russian oil and gas. New Delhi rejects Organization of Islamic Cooperation's Jammu and Kashmir reference, says it has nothing to do with internal matters of India.

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है भारत में समग्र स्वास्थ्य की पहल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बर्नवाल और पत्रकार सौरभ शुक्ला।
2: चर्चा में आपका स्वागत है, मैं हूं सौरभ शुक्ला। आयुष्मान भारत को शुरू हुए 8 साल पूरे हो गए हैं। योजना के विस्तार के साथ अब 70 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को भी इस दायरे में लाया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि 8 साल में आयुष्मान भारत ने आम लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं और इलाज के खर्च को किस हद तक बदला है और आगे इसकी दिशा क्या रहेगी, इन्हीं मुद्दों पर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO डॉक्टर सुनील कुमार बर्नवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आयुष्मान भारत को 8 साल

0: पूरे हो चुके हैं। सरकार 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों की बात कर रही है। इनमें से आप क्या मानते हैं कि असल में फायदा कितने लोगों को, कितने परिवारों को हुआ है, कितने लोगों को इस योजना का लाभ मिला है?
1: अभी तक के जो आंकड़े हैं, जो 8 साल पूरे होने पे उपलब्ध हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जैसा अधिकतर लोग जानते होंगे, ये विश्व की सबसे बड़ी गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है। इसके तहत भारत सरकार देश की आबादी के बॉटम 40% पॉपुलेशन को 5 लाख रुपए की प्रति परिवार प्रति वर्ष हेल्थ कवर उपलब्ध कराती है और आज तक 13 करोड़ से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। तो 13 करोड़ से अधिक लोगों ने विभिन्न अस्पतालों में, जो सूचीबद्ध अस्पताल हैं हमारे 38,000 से ज्यादा अस्पताल हैं, जहां इनका इलाज हुआ है और विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए इसके इलाज हुए हैं। तो 13 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लाभ उठाया है। और अगर इसे मनी के टर्म्स में देखें तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा की बचत इन 13 लाख लोगों के परिवारों को हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है जो सरकार के माध्यम से गरीब परिवारों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।
0: आम आदमी के लिए सर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आयुष्मान कार्ड होने पर 5 लाख रुपए तक का एक कवर मिलता है उसे, तो ये कवर वास्तव में काम कैसे करता है और किन किन बीमारियों के इलाज में फायदा होता है? क्या कुछ ऐसा भी है जहां ये कार्ड काम नहीं आता है?
1: देखिए, सबसे पहले तो ये कार्ड काम ही करता है जहां जो सूचीबद्ध अस्पताल है। तो जो 38,000 सूचीबद्ध अस्पताल है, जिसमें लगभग 18,000 प्राइवेट अस्पताल है और 20,000 करीब सरकारी अस्पताल है। दूसरा, ये जो कार्ड है ये केवल इंडोर पेशेंट के लिए कार्य करता है। ये सर्दी खांसी के इलाज की तरह आउटडोर पेशेंट के लिए नहीं है, बल्कि इसके लिए एडमिट होना होता है। भले ही वो एडमिशन केवल दिन भर के लिए ही हो, जैसे एनिमल बाइट है या फिर डायलिसिस है, इसमें जरूरी नहीं है कि पूरे 24 घंटा एडमिट होते हैं, लेकिन एडमिशन लेना होता है। आईपीडी पेशेंट के रूप में ही इसमें ट्रीटमेंट हो सकता है। तीसरा, ये कार्ड जिनको मिला है, जो लाभार्थी की सूची में है, इन्हें एडमिशन के समय, रादर रजिस्ट्रेशन के समय, अपने आप को आइडेंटिफाई करना होता है बायोमेट्रिक के माध्यम से, वो चाहे फिंगरप्रिंट के माध्यम से हो, फेस ऑथ के माध्यम से हो, और जहां कहीं नेटवर्क नहीं उपलब्ध हो पाता है, इवन ओटीपी के माध्यम से हो, परंतु उसे ऑथेंटिकेट होना पड़ता है कि ये जेन्यून पेशेंट है जिसकी पहले से लाभार्थी की सूची में नाम है और इन्हें उस इलाज की जरूरत है। इसके बाद ये जैसे ही इलाज की जरूरत है, अगर वो सर्टिफाई करते हैं डॉक्टर, तो उससे संबंधित कागजातों को अपलोड करना होता है एनएचए के आईटी सिस्टम पे, ताकि ये वेरीफाई हो सके कि इन्हें उस इलाज की जरूरत है। और तभी जब प्लेटफॉर्म से हम उसे ऑथराइज करते हैं, जिसे प्री ऑथराइजेशन कहा जाता है, जब ऑथराइज करते हैं तब वो ट्रीटमेंट शुरू होता है। इमरजेंसी के मामलों में जहां पे ट्रीटमेंट शुरू करना अत्यंत आवश्यक है, वैसे में ये फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि आप एडमिशन ले लें, ट्रीटमेंट शुरू कर दें, उसके बाद आप प्री ऑथराइज कर दें, जो कि ट्रीटमेंट शुरू होने के 3 दिन के अंदर का होना चाहिए। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है। व्यवस्था इसलिए की गई है कि वो लाभार्थियों का सही आइडेंटिफिकेशन हो सके, दूसरा एक्सेस या अंडर ट्रीटमेंट नहीं हो, तीसरा ये है कि ट्रीटमेंट जो है वो जितने पैकेजेज हैं, जितने हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, और अभी तक जो हमारा लेटेस्ट पैकेज है उसके अनुसार 1961 लगभग 2000 ट्रीटमेंट प्रोसीजर हैं जो कि इसके तहत एडमिसिबल हैं, और इसमें अधिकतर बीमारियां शामिल हैं, कैंसर, हार्ट डिजीज, लीवर, किडनी, इवन जो फीवर होते हैं जिसमें एडमिशन कराना होता है, डायलिसिस, ये सारे अधिकतर पैकेजेस शामिल हैं। कैंसर के ही काफी सारे पैकेजेस हैं जिसमें शामिल हैं, कई ऑर्गन ट्रांसप्लांट के भी पैकेजेस हैं, कैटरैक्ट है, नी ट्रांसप्लांट है, इस तरह के भी पैकेजेस जिसमें शामिल है। तो ये बहुत बड़ा लाभ है जिस बीमारी की इलाज गरीब आदमी कभी सोच नहीं पाता था, और रीजन ये था कि उस बीमारी के इलाज के लिए कोई ना कोई चीजें उन्हें छोड़नी पड़ती थी, चाहे वो जमीन बेचना होता था या बच्चों की पढ़ाई छोड़नी होती थी, और कई बार तो बुजुर्गों के लिए इलाज छोड़ ही देना होता था और सारी आवश्यकताओं को देखते हुए। इसके साथ ही साथ कई बार महिलाओं का इलाज पोस्टपोन होता रहता था, जो कि इस योजना के आने के बाद से और योजना के आंकड़ों से भी पता चलता है कि लगभग 50% इलाज महिलाओं के द्वारा लिया गया। तो ये शो करता है कि बहुत सारी बीमारियां जो कि दबा दी जाती थी, पोस्टपोन कर दी जाती थी, उनका इलाज इस योजना के आने के बाद संभव हो सका है। तो एक बहुत बड़ी सुविधा सरकार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जा रही है और लोग भी इसका लाभ उठा रहे हैं, और हमारी सिस्टम भी ऐसी है जिसमें कि आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये सारे ट्रांजेक्शन संभव हो पाते हैं।
0: सर, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल था कि जब अस्पताल व्यक्ति पहुंचता है तो बहुत ही इमरजेंसी होती है, उसे अंदाजा नहीं होता है कि हम सही अस्पताल में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, आयुष्मान में कवर है ये हॉस्पिटल नहीं, तो ये वो कैसे पता कर सकता है?
1: इसके लिए हम लोगों ने सिटीजन एंगेजमेंट के लिए एक अच्छे पुख्ता व्यवस्था किया है, जो रोबस्ट सिस्टम है, और इसके 4 मेजर चैनल है जिससे ये सारी जानकारियां मिल सकती है, न केवल अस्पताल की और बीमारी की, इस योजना से संबंधित कोई भी जानकारी इससे ली जा सकती है। सबसे पहला तो जो सिटीजन के लिए सबसे आसान भी है, 1455 टोल फ्री नंबर है पूरे देश के लिए, और इस नंबर पे फोन करने से हमारा कॉल सेंटर जो 24/7 काम करता है, इसके माध्यम से योजना की सारी जानकारी ले सकते हैं, कौन सा हॉस्पिटल इम्पैनल्ड है, कौन सी बीमारी कवर्ड है, किस अपने जहां उपस्थित हैं उसके आसपास का कौन सा हॉस्पिटल है, ये भी जानकारी ले सकते हैं कि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट स्पेशलिटी वाली कौन सी सूचीबद्ध हॉस्पिटल है, तो ये सारी जानकारी उससे ली। सिमिलर जानकारी ये पोर्टल पे भी उपलब्ध रहती है, तो जिनको पोर्टल का एक्सेस है, खास करके नए जनरेशन के लोगों को जो देख पाते हैं, वो आसानी से उस पे भी सर्च कर सकते हैं। हम लोगों ने एक आयुष्मान ऐप बनाया है, जो आयुष्मान ऐप को अपग्रेड करके ऐसा सिस्टम बनाया है कि व्यक्ति अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकता है, अपना कार्ड डाउनलोड कर सकता है, अपने नियर बाय हॉस्पिटल की जानकारी ले सकता है, और इसके साथ साथ अपना फीडबैक भी दे सकता है। और सेम चीज हम लोगों ने व्हाट्सएप जो है चैटबॉट के माध्यम से एक आयुष्मान सारथी भी शुरू किया है, कि अगर चैटबॉट पे जैसे ही हाई करेंगे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा।
0: तो आइए सुनते हैं आयुष्मान भारत 8 साल पूरे होने पर ये खास रिपोर्ट।
2: आयुष्मान भारत योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो भारत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की अपनी यात्रा में एक बड़ा पड़ाव पार कर रहा है। नगद रहित अस्पताल उपचार से लेकर डिजिटल स्वास्थ्य आईडी तक, यह योजना लाखों लोगों के इलाज तक पहुँचने के तरीके को बदल रही है। 8वें वर्ष में प्रवेश करते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ भारत की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में उभरी है, जो हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का नगद रहित अस्पताल उपचार कवर देती है। 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक देश की लगभग 33% आबादी शामिल है, और 21 सितंबर 2026 तक 48 करोड़ 51 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। 38,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों के नेटवर्क के जरिए ABPMJ अब तक 13 करोड़ 25 लाख अस्पताल भर्तियों को कवर कर चुका है, जिनकी कुल लागत 2.03 लाख करोड़ रुपए है। इससे कमजोर तबके के परिवारों पर पड़ने वाला निजी स्वास्थ्य खर्च काफी कम हुआ है। योजना 27 विशेषताओं में 1961 प्रक्रियाओं को कवर करती है, और अब आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी स्टाफ, 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों समेत कई अन्य वंचित समूहों को भी शामिल करती है। लेकिन आयुष्मान भारत सिर्फ अस्पताल कवर नहीं है, यह 4 स्तंभों पर टिका है जो मिलकर काम कर रहे हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को समुदायों के करीब लाते हैं, जहां मुफ्त दवाएं, जांच और डेली परामर्श उपलब्ध हैं। इन केंद्रों पर अब तक 540 करोड़ से अधिक फुटफॉल और 50 करोड़ टेली परामर्श दर्ज किए गए हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 97 करोड़ 61 लाख से अधिक आभा स्वास्थ्य आईडी बनाई गई है, जिनसे लगभग 120 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जुड़े हैं, ताकि अस्पतालों में कागज रहित और सुचारू इलाज संभव हो सके। वहीं पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 64,180 करोड़ रुपए के बजट के साथ शहरी और ग्रामीण भारत में लैबों, क्रिटिकल केयर ब्लॉक और रोग निगरानी प्रणालियों को मजबूत कर रहा है। इन सभी पहलों के जरिए गांव के स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक एक सतत देखभाल प्रणाली तैयार हो रही है, जो भारत को सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य के करीब ले जा रही है। 8 साल बाद आयुष्मान भारत सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच बन चुका है, जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी परिवार को स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा के बीच चुनाव ना करना पड़े।
0: कई बार लोगों की शिकायत ये होती है कि योजना का दायरा तो उन्हें पता है लेकिन अस्पताल में उनसे ज्यादा पैसे मांग लिए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या मैकेनिज्म हमने बनाया है कि उनकी शिकायतों को का निपटारा हो सके या शिकायतें सही जगह पहुंचे? कैसे
1: 4 माध्यम रखा है जिससे कोई भी व्यक्ति न केवल जानकारी प्राप्त कर सकता है बल्कि शिकायत भी कर सकता है, तो शिकायत के लिए भी ये चारों चैनल्स ओपन है। दूसरी बात कि ये जो शिकायत स्पेसिफिक केस है जिसमें किसी व्यक्ति को एलिजिबल रहने के बावजूद ट्रीटमेंट डिनाई कर दिया गया या फिर पैसे मांगे गए या कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे केसेस को हम लोग SOS कैटेगरी में रखते हैं और इन केसेस को 5 घंटे के अंदर ही निपटारा करना होता है, क्योंकि अगर ये ज्यादा समय लगेगा तो वो एक तरह से जो शिकायत है वो चाहे उसका रिजल्ट आउट मतलब ऑलरेडी हो जाएगा, चाहे तो ट्रीटमेंट नहीं होगा या फिर पैसे दे देगा या कुछ इस तरह का होगा, तो इसलिए इन्हें SOS कैटेगरी में रखा गया है और 5 घंटे के अंदर इसका निपटारा करना है। और ऐसे केसेस को हम लोग न केवल ये IT सिस्टम में रखते हैं बल्कि हम डायरेक्टली नेशनल लेवल से स्टेट को और डिस्ट्रिक्ट को कॉल करते हैं, साथ ही साथ हॉस्पिटल को भी कॉल करते हैं ताकि उन्हें पता चले कि इस तरह का कंप्लेन आया है। और हमने देखा है कि 90% से ज्यादा केसेस में ये चीजें रिजॉल्व हो गई हैं। और ये मैं नागरिकों को भी अवगत कराना चाहता हूँ कि ये सुविधा उन्हें उपलब्ध है। जहां भी आयुष्मान कार्ड देने के बावजूद 1 रुपए की भी मांग की जाती है तो वो पहले तो उनसे रसीद मांगे ताकि ये पता चला किस चीज के लिए उन्होंने पैसे मांगे हैं। वो इलाज अगर आयुष्मान भारत में कवर्ड है तो 1 रुपए भी नहीं लगने चाहिए, और अगर वो रसीद दिए बिना पैसे की मांग कर रहा है तो निश्चित रूप से इस पे शिकायत की जाए और इसका निपटारा 5 घंटे के अंदर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की जो पूरी टीम है कॉल सेंटर और ये लग करके करती है और हमें अधिकतर मामलों में सफलता मिल जाती है।
0: आज के दौर में तकरीबन कितने सरकारी और निजी क्षेत्र के अस्पताल आयुष्मान योजना से जुड़े हुए हैं और क्या ग्रामीण और छोटे शहरों में इसे और बढ़ाने की योजना है हमारी?
1: देखिए, ये जो अब तक की स्थिति है 38,000 से ज्यादा हॉस्पिटल जो है ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सूचीबद्ध है, इम्पैनल्ड है। इसमें से 18,000 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, 20,000 के आसपास सरकारी अस्पताल हैं जिसमें मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिविजनल हॉस्पिटल, CHCs ये सारे इम्पैनल्ड है। ये 38,000 हॉस्पिटल पूरे देश में स्प्रेड आउट है, जाहिर सी बात है कि शहरों में ज्यादा हॉस्पिटल है, परंतु इस योजना के माध्यम से जिसको सरकार फंड कर रही है हमने इवन रूरल एरिया में बहुत ज्यादा हेल्थ सर्विस की डिमांड बढ़ाई है। मतलब लोग जो है अब इलाज करने आ रहे हैं जो पहले इलाज नहीं कर पा रहे थे, और जब इलाज करने आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि जिस क्षेत्र में डिमांड है वहां हॉस्पिटल स्थापित करें। तो इस योजना के माध्यम से रिमोट एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में काफी हॉस्पिटल्स खुले हैं, कई खुलने की भी प्रक्रिया में है, शायद ही कुछ जिले बचे हों जहां पे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल अभी तक ना पहुंचा। सरकारी अस्पताल तो निश्चित रूप से सरकार की योजना के तहत ही खुल रही हैं, परंतु ये सुविधा इस योजना के आने के बाद से बढ़ी है। इवन सरकारी अस्पताल जो इसमें सूचीबद्ध है वो ऐसे तो निःशुल्क इलाज सभी लोगों की करते हैं लेकिन वो आयुष्मान कार्ड धारी को आयुष्मान कार्ड मांग करके इलाज करना है, ताकि इलाज तो उन्हें निःशुल्क मिलेगा लेकिन सरकारी अस्पताल को बाद में इस योजना के तहत राशि मिल जाएगी, क्लेम अमाउंट मिलेगा, और इसका उपयोग करके सरकारी अस्पताल अपने आप को ज्यादा सुदृढ़ कर सकते हैं। जो आकांक्षी जिले हैं उसमें जो हॉस्पिटल स्थापित हैं वहां अगर कोई इलाज करता है तो जो क्लेम अमाउंट होता है उस पे हम एक्स्ट्रा इंसेंटिव देते हैं ताकि वो वहां पे न केवल सर्वाइव करें वो बेहतर कार्य कर सकें।
0: इन अस्पतालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होता है किसी इलाज के लिए, उसकी मॉनिटरिंग नेशनल हेल्थ अथॉरिटी किस तरह से करती है?
1: देखिए, हम लोग जब भी किसी हॉस्पिटल को सूचीबद्ध करते हैं, इम्पैनल करते हैं, तो उसके विभिन्न क्राइटेरियाज रखे हैं। जैसे मिनिमम नंबर ऑफ बेड्स होने चाहिए, ज्यादातर स्पेशलिटी में 20 बेड है। दूसरा, हमें ये पता होना चाहिए कि क्या क्या स्पेशलिटीज हैं जिसके लिए वो इम्पैनल कर रहे हैं। मतलब अगर एक हॉस्पिटल में 4 स्पेशलिटी है तो उन्हें चारों के लिए इम्पैनल होना पड़ेगा। एक चूज नहीं कर सकते कि जिसमें ज्यादा फायदा है, जिस बीमारी के इलाज में, उसको चूज नहीं कर सकते, बल्कि जो स्पेशलिटी है सभी को रखना पड़ेगा। स्पेशलिटी जैसे ही डालेंगे उन्हें बताना पड़ेगा डॉक्टर्स कौन कौन है, उनके क्वालिफिकेशंस क्या है। ये जो डॉक्टर्स हैं ये फुल टाइम है या पार्ट टाइम है, और ये चीज हम लोगों ने अब इवन हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री पे उन डॉक्टरों का रजिस्टर होना मैंडेटरी किया है, ताकि वहां से हम सारे इंफॉर्मेशन निकाल पाए कि जो डॉक्टर की ये नाम बता रहे हैं वो डॉक्टर सच में वेरीफाइड है, वो डॉक्टर और कहां कहां है। इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री पे भी उसे रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, जिन राज्यों में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है उसके तहत रजिस्टर होना चाहिए, फायर की जो क्लियरेंसेस हैं, बिल्डिंग लॉज की क्लियरेंसेस हैं, बायोमेडिकल वेस्ट के क्लियरेंसेस हैं, ये सब मैंडेटरीली जो रिक्वायर्ड है वो उसमें निश्चित रूप से होना चाहिए। साथ ही साथ हमने इस वर्ष अब नए हॉस्पिटल पैनल करने के लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसे भी मैंडेटरी किया है।
0: सर, इस योजना में रोज आपने बताया कि किस तरह से 70-80 हजार का आंकड़ा रहता है जहां पर इलाज चल रहा होता है, दावे आ रहे होते हैं आप लोगों के पास में क्लेम्स में, तो ऐसे में एक आशंका ये भी रहती है कि ये दावे फर्जी तो नहीं आ रहे हैं, इलाज तो नहीं किया जा रहा है।
1: अच्छी बात है इस आयुष्मान भारत पीएमजे में कि हर इलाज को बंडल्ड पैकेज के रूप में बनाया गया है। मतलब अगर आपने कैटरेक्ट सर्जरी कराई है तो उसमें दवा का कॉस्ट अलग और कंज्यूमेबल्स का अलग, ऑपरेशन का अलग नहीं है, वो सब मिला करके एक बंडल्ड कॉस्ट है। नी ट्रांसप्लांट का बंडल्ड कॉस्ट है, डायलिसिस का बंडल्ड कॉस्ट है। तो अगर आपने ज्यादा इलाज कराया तो भी आपको ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। मतलब अगर कोई हॉस्पिटल सोचता है कि इसे ज्यादा इलाज करा दें, ज्यादा दिन रख लें, तो उससे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि उसके कॉस्ट फिक्स्ड हैं। दूसरी बात यह है कि अब जब वो क्लेम सबमिट करते हैं तो ऐसे कई शिकायतें आई और कई ऐसे पाए भी गए जिसमें हॉस्पिटल्स ने क्लेम गलत सबमिट किए, एक्स्ट्रा सबमिट किए, गलत डॉक्यूमेंट सबमिट किए। इसमें 3 कैटेगरी आता है। एक तो है जिसमें एरर्स मिल जाते हैं, दूसरा है जिसमें एब्यूज हुआ है, मतलब कि ट्रीटमेंट चाहिए था थोड़ा सा, उसको और 2-3 पैकेज बुक करके ट्रीटमेंट कर दिया, इलाज एक चीज के लिए गए थे साथ में 2 और इलाज कर दिए, एक्स्ट्रा बुक कर दिए, इस तरह के एब्यूज हैं। थर्ड है फ्रॉड है, जिसमें पेशेंट कोई और है, ऑथराइजेशन किसी का है, फोटो किसी और का लगाया है, डॉक्यूमेंट जो लगाया है कैटरेक्ट में लेंस या नी ट्रांसप्लांट में जो इम्प्लांट लगाया है वो पता चला कि वो लगा ही नहीं है, या लगा है तो एक ही इम्प्लांट 4 जगह लगाए हैं या एक ही लेंस 4 जगह लगाए, वो पकड़ना जरूरी है।
0: जी, डुप्लीकेसी हो गई।
1: तो हम लोगों ने एक नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट बनाया और जिस तरह से वो दिमाग लगा रहे किस तरह से चीट कर सकते हैं, हमारी टीम ने इस पे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बहुत सारे ऐसे केसेस को सबसे पहले क्लेम प्रोसेसिंग शुरू होने के पहले इसे नाफू ट्रिगर से गुजरना पड़ता है, और ऐसे हम लोगों ने 61 ट्रिगर्स लगाए हैं, और इसमें वो सारे चीजें जिसमें फोटोग्राफ्स बदले गए हैं, डॉक्यूमेंट गलत लगाए गए हैं, इम्प्लांट के बार कोड मिसमैच हो रहे हैं या बार कोड कई जगह यूज हुए हैं, ऐसे करके हम लोगों ने कई सारे केसेस को पकड़े हैं और अब तक 670 करोड़ के आसपास का क्लेम हम लोगों ने प्रिवेंट किया। वो क्लेम को हम पे नहीं करके उसे रिजेक्ट किए, और ऐसे मामले को हम लगातार वॉच करते हैं। जो भी हमारा ट्रिगर जो है सस्पिशियस बताता है उनसे हम स्टेट्स को भेजते हैं कि उसे वेरीफाई किया जाए। उनके यहाँ भी स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट है जिसमें डॉक्टर्स होते हैं जो चेक करते हैं फिर से, या जरूरत पड़ने पे हॉस्पिटल इंस्पेक्ट भी करते हैं, और अगर वो फ्रॉड निकलता है तो उसे न केवल क्लेम रिजेक्ट होता है, फ्रॉड के केस में वो डी इम्पैनल हो सकते हैं, फाइव टाइम्स तक उस पे पेनल्टी लग जाती है क्लेम के अमाउंट पे। तो इस तरह की कार्रवाइयां भी होती है, कुछ केसेस में इवन एफआईआर भी दर्ज होते हैं। तो ये चेक्स है, अब इसमें हमारे ट्रिगर्स और ज्यादा एक्यूरेट हो रहे हैं बिकॉज हम अब मशीन लर्निंग और एआई का यूज कर रहे हैं, जिससे कि टूल भी ये समझने लगता है कि इस तरह की टेंडेंसी बढ़ रही है, इस तरह के क्लेम्स ज्यादा आ रहे हैं, और हम जो डॉक्यूमेंट है उसको ओसीआर टेक्नोलॉजी से पढ़ पाते हैं और इसलिए इस तरह के ट्रिगर्स को अप्लाई कर पाते हैं। तो ऐसी कई व्यवस्था

0: व्यवस्थाएं की गई है। इसके अलावा हम लोगों ने एक नई चीजें और शुरू की है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लेम हैं जो बहुत छोटे अमाउंट के हैं, मतलब वॉल्यूम बहुत है, वैल्यू बहुत कम है। तो अब हम लोगों ने AI को यूज करके ऑटो एडजुडिकेशन करना शुरू किया है कि सिस्टम ही उसको एडजुडिकेट कर देती है बेस्ड ऑन जो रिपोर्ट्स देते हैं। तो ऑटो एडजुडिकेशन के बाद से लगभग 30% ऑफ द क्लेम्स इन वॉल्यूम टर्म्स अब ये ऑटो एडजुडिकेशन से क्रॉस कर रहा है। तो ये एक अच्छा सिस्टम बना है, आने वाले दिनों में और भी सारे पैकेजेस जो कि हाई वैल्यू भी हों उनको भी ऑटो एडजुडिकेशन के माध्यम से ले जाने का प्रयास किया जाएगा। और इसके लिए हम लोगों ने एक हैकाथॉन किया था जिससे हमें अच्छे सॉल्यूशंस मिले और तभी हम इस चीज को लागू कर पाए हैं। आने वाले वर्षों में जब हम 9th ईयर में जा रहे हैं इस योजना के, इसका उपयोग और बढ़ाएंगे।
1: सर, कोई ऐसा भी जिला या राज्य है जहां पे लग रहा है आपको कि इस योजना को लागू करना चुनौतीपूर्ण है, उन जगहों पे किस तरह से काम कर रहे हैं क्या? और
0: हमारे लिए जो एक तो अब पूरा देश इस योजना से लाभान्वित हो रहा है, जो अंतिम राज्य था वो पश्चिम बंगाल था जो कि 16 अगस्त को इस योजना पे आ गया है, तो अब तो पूरे देश में इसे लागू किया गया है। जो हमारी कठिनाई आती है वो किसी राज्य विशेष में ज्यादा नहीं है, बट कुछ क्षेत्र जरूर हैं जो काफी रिमोट हैं, वो ट्राइबल एरियाज में भी हो सकते हैं, हिली रीजन्स में आते हैं, फॉरेस्ट रीजन्स में आते हैं, जहां पे नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। और ये नेटवर्क की प्रॉब्लम हॉस्पिटल्स तो जब बनाते हैं तो हॉस्पिटल किसी न किसी व्यवस्था से नेटवर्क सुनिश्चित कर लेती है, बट हमें आयुष्मान कार्ड बनाने में कई बार कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि कार्ड भी ऑनलाइन ही ऑथेंटिकेशन के बाद बनता है। तो हम लोगों ने ऐसे केसेस में ऑफलाइन भी व्यवस्था की है। इसके अलावा जो चैलेंज ये आ रही है कि कुछ रिमोट क्षेत्रों में अभी भी सभी स्पेशलिटी के हॉस्पिटल्स नहीं मिल पाते हैं, जो हमारी सुपर स्पेशलिटी है, जैसे कैंसर है, हार्ट डिजीज है, किडनी, लीवर, कई दूरस्थ क्षेत्रों में ये स्पेशलिटी नहीं हो पाती है। और इसलिए लोगों का डिपेंडेंस फिर दूसरे बाहर जाकर के इलाज कराने पे हो जाता है। तो ये चैलेंजेज हैं, बट इसको धीरे धीरे हम ओवरकम कर रहे हैं और हमें लगता है आने वाले दिनों में ये बेहतर ही होता चला जाएगा। दूसरी एक ये स्थिति है कि हम डिजिटल मिशन जो रखे हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसके माध्यम से पेशेंट को हम एम्पावर कर रहे हैं सो दैट कि दे हैव ऑल हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑन देयर मोबाइल। अब ऐसा होने से इनका लाभ ये हो रहा है कि वो कहीं भी इलाज करते हैं तो उन्हें रिकॉर्ड कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मोबाइल से शेयर कर पाते हैं। इससे ये बेहतर डायग्नोसिस में फायदा होता है और ये PMJ के भी बेनिफिशियरीज को बहुत लाभ हो रहा है। तो हम इसके माध्यम से लोगों को ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जो पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड ऐप है और भारत सरकार ने जो लॉन्च किया है आरोग्य सेतु 2.0, ये लोगों के लिए बहुत बड़ा सुविधा है जिसके माध्यम से सारे रिकॉर्ड अपने मोबाइल में रहता है और उससे हिस्ट्री भी बनती जाती है, इलाज भी बेहतर हो पाता है, डायग्नोसिस बेहतर हो पाता है। तो ऐसे थोड़े बहुत अभी चैलेंजेज हैं, परंतु हमारा देश काफी बड़ा है, आबादी बहुत है, क्षेत्र भी अलग अलग तरह का है, चैलेंजेज अलग है, कल्चरली डिफरेंट है, ज्योग्राफिकली डिफरेंट है, इसलिए इस योजना में हमेशा थोड़ी बहुत तो चैलेंज रहेगी, परंतु हम उसे इतने बड़े सिस्टम में नेशनल लेवल पे काफी हद तक सॉल्व करने में सफल रह रहे हैं।
1: सर, 70 साल और उससे ज्यादा की उम्र के लोगों को भी योजना के दायरे में लाया गया है अब, तो ये क्या मुश्किल रहा, कुछ चैलेंजेस आए यहाँ भी?
0: एक तरह से चैलेंज से ज्यादा ये अपॉर्चुनिटी है। हम 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को, जबकि ऐसे उम्र में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज भी इंश्योरेंस देना बंद कर देती है, कई घरों में परिवार वाले भी इलाज कराना नहीं चाहते हैं और वो बुजुर्ग व्यक्ति भी छोड़ देता है कि अब हमारा समय आ गया, बच्चों पे ध्यान दो, इस तरह की बात करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने ये योजना वय वंदना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अधीन लाई है और ये अब 2 वर्ष पूरा होने को है, अक्टूबर 2024 में चालू किया गया था। 6 करोड़ से ज्यादा बुजुर्ग को इसमें लाभ मिलेगा ऐसी उम्मीद की जा रही है। 1.36 करोड़ कार्ड लोगों ने क्रिएट कर लिया है। लगभग 20 लाख से ज्यादा लोगों ने, 70 वर्ष से ज्यादा के लोगों ने इलाज का लाभ भी लिया है और 5,000 करोड़ तक की राशि का उनका बचत भी हो चुका है जो सरकारें खर्च कर रही है। तो ये देख के लग रहा है कि जिन लोगों को स्वास्थ्य की सबसे जरूरत है सबसे ज्यादा, उनके लिए सरकार उनके साथ खड़ी हुई है और हमें सबसे ज्यादा क्वेरी ऐसे ही लोगों से आती है जो कि 70 वर्ष से ज्यादा है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो किसी भी आय वर्ग से हो, उनको ये लाभ मिल पा रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसमें चैलेंजेस थोड़ी आती है क्योंकि काफी बुजुर्ग लोग जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो कई बार उनका फिंगरप्रिंट नहीं काम करता, तो हम लोगों ने फेस ऑथ की व्यवस्था की है। इस तरह से हमें छोटे मोटे व्यवस्थाएं और इम्प्रूव कर रहे हैं। हॉस्पिटल में जैसे वो पहुंचते हैं तो उनकी बैठने की व्यवस्था, उन्हें ऐसा सुविधा हो जिससे वो अनकंफर्टेबल नहीं हो हॉस्पिटल में जाकर के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि कई बुजुर्ग है कई बार अकेले ही आते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये जरूरी है कि हम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो सूचीबद्ध अस्पताल है उनमें भी उनकी आवश्यकता के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें, तो ये कार्य भी NHA कोशिश कर रहा है करने का।
1: एक आखिरी सवाल सर, जल्दी से उसका जवाब आपसे चाहूंगा कि 8 सालों में क्या सीखने को मिला हमें, और अगले 4-5 सालों की अगर बात करें तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी?
0: पिछले 8 वर्षों की जर्नी में ये पता चला कि हमें अगर इतने बड़े स्केल पे लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करानी है तो IT सिस्टम रोबस्ट होना चाहिए जिससे कि हम हर तरह के डिफरेंट टाइप के केसेस को हैंडल कर सकें। अब जो आने वाले समय में हमें ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि पिछले 8 सालों में जैसे हम लोगों ने 13 करोड़ पेशेंट का इलाज करा है, इनके ट्रीटमेंट की हिस्ट्री से रिलेटेड आंकड़े उपलब्ध हैं। इन आंकड़ों को एनोनिमाइज करके, इससे पर्सनल इंफॉर्मेशन हटा करके, इन आंकड़ों की बहुत ज्यादा वैल्यू है रिसर्च के लिए, डिजीज सर्विलेंस के लिए, पूरे देश की डिजीज मैपिंग के लिए, किस क्षेत्र में किस तरह की बीमारियां बढ़ी है या है, किस एज ग्रुप में किस तरह की बीमारी है, किस जेंडर में कौन सी बीमारी बढ़ रही है, ऐसी तरह की एक्सरसाइज की जा सकती है। और हम जल्द ही एक ऐसा सिस्टम ला रहे हैं जिससे कि जो सिक्योर डेटा एनवायरनमेंट कहलाता है, जिसमें हम इन आंकड़ों को बिना दिए, बिना इसका एक्सेस किए, हम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को, यहाँ तक कि जो प्राइवेट कंपनीज भी हो सकती हैं, टर्म्स कंडीशन ऑफ कोर्स अलग से डिसाइड की जाएगी, मतलब ये डेटा पे अपने एल्गोरिदम रन करके रिजल्ट्स ले सकते हैं। ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई है और ये फर्दर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेवरेज करने में फायदा आएगा, जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने, इसके माध्यम से नए नए टूल्स, चाहे वो स्क्रीनिंग का हो, डायग्नोसिस का हो, डेवलप करने में भी सुविधा होगी। तो आने वाले वर्षों में हम नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एक बहुत ही डेटा ड्रिवन IT एक्सपर्टीज हासिल करेगा और इसका उपयोग इस योजना के बेहतर और क्वालिटी हेल्थ केयर डिलीवरी में कर पाएगा।
1: जाहिर है इसका फायदा आम लोगों को भी होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।
0: थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत में समग्र स्वास्थ्य की पहल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बर्नवाल और पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और यूट्यूब चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। चर्चा का विषय है।

0: 98 किलोग्राम वजन उठाकर दूसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने स्नैच में 87 किलोग्राम, क्लीन एंड जर्क में 111 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उनका कुल स्कोर 198 किलोग्राम रहा। गोल्ड मेडल नॉर्थ कोरिया की री सॉन्ग गुम ने जीता। उन्होंने कुल 215 किलोग्राम वजन उठाया, स्नैच में 94 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 121 किलोग्राम। लेकिन भारत के नजरिए से मीराबाई का ये सिल्वर मेडल बेहद महत्वपूर्ण है। ये उनका एशियन गेम्स में पहला मेडल है। इससे पहले हंगझाऊ एशियन गेम्स 2023 में मीराबाई चौथे स्थान पर रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने पोडियम पर जगह बनाकर एशियन गेम्स में अपने मेडल के सूखे को खत्म कर दिया। मीराबाई के सिल्वर मेडल ने भारतीय वेटलिफ्टिंग के 28 साल के इंतजार को भी खत्म कर दिया। भारत ने आखिरी बार 1998 में बैंकॉक एशियन गेम्स में कर्णम मल्लेश्वरी के जरिए वेटलिफ्टिंग में मेडल जीता था। मीराबाई चानू के साथ भारत की वेटलिफ्टिंग टीम में भारत की भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव का महिलाओं के 53 किलोग्राम स्नैच राउंड में पहले प्रयास में 84 किलो और दूसरे प्रयास में 87 किलोग्राम का वजन उठाया था, लेकिन तीसरे और आखिरी प्रयास में वो विफल रही। वो 90 किलो का वजन नहीं उठा सकी, यानी कि स्नैच राउंड में 87 किलो उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा। क्लीन एंड जर्क में 108 किलोग्राम का वजन उठाया। उन्होंने कुल 195 किलोग्राम का संयुक्त भार उठाकर अपने अभियान को 8वें स्थान पर समाप्त कर दिया।
1: We also had great news from Wushu and Sakshi Manwal has a report.
2: Russia Vina Devi secured her place in the women's 60kg final after beating Indonesia's Thania 2-0 in the semi-final. The Indian Wushu star will now compete for the gold medal in tomorrow's final on 23rd September. With this victory, India now stands assured of a medal from the world of Wushu in the ongoing Asian Games 2026.
1: There was history made for India in soft tennis, and here's a report of how the action unfolded. Jaimina won the bronze medal in men's singles at the 2026 Asian Games in Aichi, Nagoya, becoming the first Indian to win an Asian Games medal in soft tennis. Mina's historic run ended in the semi-finals, where he lost to Japan's Takuya Kurosaka 3-5, 1-4, 1-4, 4-1, 6-4, 1-4. The Indian had earlier beaten the Philippines' Sherwin Nagut in a thrilling 7-game quarterfinal to assure India of its first medal in the sport at the Asian Games. The bronze adds to Meena's steady rise on the international soft tennis circuit. Let's now hear from the Indian athlete who created history in Japan. He's speaking exclusively on Akashvani.
3: बिल्कुल भरोसा था, और सबसे बड़ी चीज कि हम स्टार्टिंग में क्वार्टर फाइनल्स भी हारे, हम मिक्स डबल्स में भी प्री क्वार्टर फाइनल्स हारे, तो उसके बाद यहाँ पर मेडल निकालना ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि जब मेंस इवेंट में जीता जीता मैच हारे थे तो रात रात नींद नहीं आ रही थी और मेंटली बहुत प्रेशराइज भी हो रहे थे, और उसके बाद मिक्स डबल्स इवेंट्स में भी मैं जीता हुआ मैच हार गए तो और डिसअपॉइंट हुआ मैं खुद से बहुत। मैं ही जान पा रहा हूँ कि वो कितना मुश्किल था मेरी टीम के लिए, मेरे कोच के लिए, मेरे घर वालों, स्पेशली इंडिया के लिए, इंडिया के सॉफ्ट टेनिस के जो बच्चे थे, जो करोड़ों भारतीयों की उम्मीद है उस पर खड़ा उतरना सर, ये मेरे लिए ओलंपिक मेडल से बराबर है। आकाशवाणी से जो मेरा इंटरव्यू हुआ था, इट वॉज अ मोटिवेशन, मौका दिया था मेरे सपने और मेरी इच्छा जाहिर करने का दुनिया के सामने। तो सुबह सर और हमारा सपना था सर, आज हम यहाँ पर खड़े हैं, तो वाकई में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आकाशवाणी का, टीम का बहुत बहुत शुक्रिया।
1: टाइम नाउ टू हेड टू द शूटिंग रेंज, वेयर शाहिद आजमी हैज अ रिपोर्ट फ्रॉम अ मिक्स्ड डे फॉर द इंडियन कंटिंजेंट।
4: शूटिंग रेंज से भारत के लिए डबल ब्रॉन्ज की खबर सामने आई है। स्की टीम इवेंट में भारतीय निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला और पुरुष दोनों टीम स्पर्धाओं में कांस्य पदक अपने नाम किए। सबसे पहले बात महिला स्की टीम की, राजा ढिल्लों, परिणाश धालीवाल और महेश्वरी चौहान की तिकड़ी ने शानदार निशानेबाजी करते हुए 331 अंक हासिल किया और भारत की झोली में कांस्य पदक डाल दिया। और इसके बाद पुरुष स्की टीम ने भी कमाल कर दिया। ओलंपियन अनंतजीत सिंह नारुका, महराज अहमद खान और भौतेक सिंह ने कुल मिलाकर 346 अंक हासिल किए और भारत को एक और कांस्य पदक दिलाया। वहीं महिला स्कीट के व्यक्तिगत फाइनल में राजा ढिल्लों भी चौथे स्थान पर रही, जबकि शूटिंग के एक बड़े मुकाबले में मनु भाकर महिला 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में 181.1 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर रही। यानी शूटिंग रेंज पर भारत ने आज दो कांस्य पदक जरूर जीते, लेकिन राजा ढिल्लों, अनंतजीत सिंह नरुका और मनु भाकर के व्यक्तिगत मुकाबलों में पदक से चूकने का मलाल भी रहा। निराशा ईशा सिंह और सुरुचि सिंह के प्रदर्शन से भी हुई। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल इवेंट के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। आपको बता दें, ईशा सिंह ने 572 और सुरुचि ने 568 अंक हासिल किए। भारत को शूटिंग से अब तक

0: कुल 7 मेडल मिले हैं, जिनमें 4 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। हालांकि गोल्ड से अभी भी दामन खाली है। आपको ये भी बता दें, पिछले एशियन गेम्स में भारत ने 7 गोल्ड सहित कुल 22 पदक जीते थे।
1: The Indian women's team was in action in hockey, and well, it was another one-sided encounter. India continued its unrelenting form in the women's hockey competition at the ongoing Asian Games after blanking Thailand 21 in a Pool B fixture. This win joins the list of India's thumping 19-0 and 17-1 victories over Uzbekistan and Indonesia respectively. Forward Deepika starred with 9 goals, while Namneet Kaur scored 4, Rutuja Pistol bagged a hat-trick. India won bronze in Hangzhou 2023 and is in hunt for their first Asian Games gold since 1982. Time now to check out what happened in the boxing arena. शायद आजमी
0: भारत के अंकुश पंघाल आज मुक्केबाजी स्पर्धा में सर्वसम्मति से हुए फैसले में जीत के साथ पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पहली बार एशियाई खेलों में उतरे 21 वर्षीय राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता पंघाल ने बहरीन के हमसा ओगेल को प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 5-0 से हराया। पिछले साल विश्व मुक्केबाजी कप में रजत पदक जीतने वाले अंकुश अब पदक पक्का करने से एक कदम दूर हैं। वो क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान के नेहरूज सालिमोव से खेलेंगे।
1: टाइम नाउ फॉर ऑल द एक्शन फ्रॉम द इंडियन कंटिजेंट फ्रॉम टेबल टेनिस। साक्षी मानवाल हैज अ रिपोर्ट।
2: Harmeet Desai and Yashaswini Ghorpade booked their place in the mixed doubles quarterfinals with a 3-1 victory over Hong Kong's Yu Kuan Tho and Wing Lam. The Indian pair won 11-6, 11-5, 10-12, 11-7 to advance to the last 8. Manu Shah and Dia Chitale stormed into the mixed doubles quarterfinals with a dominant straight games victory over the Maldives' Ahmed Musa and Nazim Eshat. The Indian pair won 11-0, 11-7, 11-6 in just 15 minutes, wrapping up a commanding performance to book their place in the last 8. Harmeet and Yashaswini will face Lin Shidong and Kuai Man of China, while Dia and Manish will face Wong Chun and Du Hoi of Chinese Taipei.
1: The Indian contingent has been giving their best in fencing. Vijeta Chaturvedi has more.
3: फेंसिंग मतलब तलवारबाजी का खेल। इंडिविजुअल सेबर में गीशो निधि कुमार पद्मा ने राउंड ऑफ 32 में शानदार प्रदर्शन करते हुए लाओस के क्विंटन सेसाना को 15-8 से हराया और प्री क्वार्टर यानी कि राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। राउंड ऑफ 16 में उनका मुकाबला कजाकिस्तान के आर्टियोम से हुआ। यहां भारतीय फेंसर ने कड़ी चुनौती दी, लेकिन मुकाबला 11-15 से हार गए। इस परिणाम के साथ कुमार सेन पद्मा का इंडिविजुअल सेबर अभियान समाप्त हो गया। वहीं बात करें महिलाओं की व्यक्तिगत फॉइल स्पर्धा की, तो मीना देवी नौरेम और आशिता स्टेलिन राज जॉयस राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गई।
1: द इंडियन मेन बैडमिंटन टीम वर ट्राइंग टू क्रिएट हिस्ट्री टुडे। Let's hear what Sakshi Manwal has in her report.
2: India lost 1-3 to China in the men's team semi-final at the Asian Games and settled for the bronze medal. Shi Yukui defeated Lakshya Sen in straight games, winning 21-16, 21-18 in the opening match of the men's badminton team semi-final. Later, Sathvik Sairaj Rankireddy and Chirag Shetty made a strong start against China's Liang Weiqing and Wang Chang, defeating them in straight games 2-0, 21-11, 22-20. They helped India level the score with China at 1-1. However, Li Shifeng beat Ayush Shetty 21-19, 21-13 in straight games to put China 2-1 ahead of India. Arjun and Hariharan went down 21-16, 17-21, 21-9 in the fourth match of the semi-final tie. The Indian pair showed some resistance in the second game, but the Chinese duo quickly stopped the fight back. India's bronze is only its second ever Asian Games medal in the men's team badminton event.
1: India war in action in the kabaddi competition. Vijeta Chaturvedi has more.
3: भारतीय महिला टीम का मुकाबला ईरान से हुआ और भारतीय टीम ने ये मैच 37-23 के अंतर से अपने नाम कर लिया। मुकाबले के पहले हाफ में भारत 19-15 से आगे था। दूसरे हाफ में भारतीय खिलाड़ियों ने डिफेंडिंग और रेडिंग दोनों में बेहतर तालमेल दिखाया और बढ़त को लगातार मजबूत किया। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम ने ग्रुप स्टेज में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। अब बात करते हैं भारतीय पुरुष कबड्डी टीम की। पुरुष टीम का सामना बांग्लादेश से हुआ और भारत ने यहां भी बड़ी जीत दर्ज की। भारत ने बांग्लादेश को 48-25 से हराया। पहले हाफ में ही

0: भारत ने 29-9 की मजबूत बढ़त बना ली थी। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष टीम ने ग्रुप स्टेज में अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज की। बांग्लादेश पर जीत के बाद भारत ने ग्रुप ए से सेमीफाइनल में भी अपनी जगह पक्की कर ली है। अब भारतीय पुरुष टीम का ग्रुप स्टेज में आखिरी मुकाबला 24 सितंबर को चीनी ताइपे के खिलाफ होगा। वहीं महिला टीम भी 24 सितंबर को जापान से भिड़ेगी। इसके बाद 25 सितंबर को सेमीफाइनल मुकाबले होंगे। एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का मेडल तो पक्का हो गया है।
1: India were trying to make an impact in swimming after a disappointing day yesterday. Sakshi Mandwal has a report.
2: Sajan Prakash missed the swimming men's 100-meter butterfly heats. Meanwhile, his compatriot Benedictine Beniston had finished fourth in the heats with a timing of 53.08 seconds. Anish Sunil and Vedant Madhavan finished fourth and sixth respectively in their men's 200-meter freestyle heats. Anish clocked 1 minute 22.65 seconds ahead of Madhavan's 1 minute 23.67 seconds.
1: There were a lot of hopes from the Indian equestrian contingent. Vijeta Chaturvedi has more.
0: भारतीय घुड़सवारों ने इवेंटिंग के क्रॉस कंट्री चरण में हिस्सा लिया। भारत की ओर से फुआद मिर्जा, अर्जुन सिंह नागरा और आशीष लिमई मैदान में उतरे। इसमें ड्रेसेज, क्रॉस कंट्री और शो जंपिंग जैसे चरण शामिल होते हैं, यानी सिर्फ घोड़े की रफ्तार ही नहीं बल्कि नियंत्रण, सटीकता और बाधाओं को पार करने की क्षमता भी महत्वपूर्ण होती है। हालांकि भारतीय दल का प्रदर्शन आशा अनुरूप नहीं रहा, इसलिए भारत का क्रॉस कंट्री इवेंट में अभियान आज समाप्त हो गया।
1: A lot of the Indian contingent were in action in the squash competition. Well, Sakshi Mandwal will tell us how they fared.
2: Indian squash players Abhay Singh, Veer Chotrani and Tanvi Khanna all advanced to the round of 16 in their respective singles events on the opening day of squash at the 20th Asian Games, HC Nagoya 2026. Tanvi Khanna made quick work of South Korea's Kim Dami cruising to a 3-0 victory in just 16 minutes. The Indian won 11-5, 11-7, 11-5 to book a place in the round of 16. Abhay Singh defeated Thailand's Arkaradit 11-1, 11-0, 11-2, cruising to a 3-0 easy victory for himself. Veer Chotrani defeated Sri Lanka's Shamil Vakil 11-8, 11-3, 11-3, then also securing a place for himself in the round of 16 men's singles in squash.
1: There was a lot at stake for the Indian contingent in rowing. Shahid Azmi tells us how it unfolded.
3: रोइंग से भारत के लिए अच्छी खबर है। एशियन गेम्स में भारतीय रोअर्स ने चार स्पर्धाओं के फाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के सिंगल स्कल्स में बलराज पवार ने 6 मिनट 52.84 सेकंड के समय के साथ हीट में तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं पुरुषों के डबल स्कल्स में सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी 6 मिनट 15.63 सेकंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रही और फाइनल ए में पहुंची। लाइटवेट डबल स्कल्स में रोहित और उज्जवल कुमार सिंह ने चौथा स्थान हासिल करते हुए फाइनल में जगह बनाई। क्वाड्रपल स्कल्स में अरविंद सिंह, कुलविंदर सिंह, नवदीप सिंह और जकार खान की टीम ने फाइनल में जगह बनाई। अब भारतीय रोवर्स की नजरें पदक पर हैं। डबल स्कल्स का फाइनल कल सुबह खेला जाएगा।
1: फॉर इंडिया टू स्टे इन कैनो कॉम्पिटिशन दे हैड टू डू वेल टूडे। साक्षी मानवाल टेल्स अस हाउ द इंडियन कंटिंजेंट फेयर्ड।
2: India's men's kayak 4-500-meter team finished third in the heats and qualified for the final A. Arun Singh, Harshvardhan Singh, Shaktawat, Varinder Singh, Nucha Singh Oinam combined for a timing of 1 minute 29.447 seconds in the heats. Megha Pradeep finished fifth in the women's canoe single 200 meters heats with a timing of 49.675 seconds and qualified for the semi-final. Sonia Devi and Parvati Geeta ended 6th in the women's kayak double 500 meter heats with 2 minutes 02.538 seconds. They have qualified for the semi-finals. In the men's kayak double 500 meter heats, Chempadil, Satya Prakash, Prasanna Kumar and Prohit Baroy finished on the 5th spot with the timing of 1 minute 41.141 seconds and qualified for the semi-finals. In women's canoe double 500 meter heats, Megha Pradeep and Neha Devi finished on the 5th spot with a timing of 2 minutes 8.713 seconds and qualified for the semi-finals.
1: The Indian contingent is really trying their best to make an impact in Sepak Takraw. Let's hear what Vijeta Chaturvedi has for us in her report.
0: फुर्ती, संतुलन और किक के खेल सेपक

0: टक्करों में आज भारतीय अभियान में भारत के पुरुष टीम रेगु का मुकाबला फिलीपींस से हुआ। भारत के लिए ये मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण था। भारत ने खेल का आगाज शानदार अंदाज में किया। पहले मुकाबले में भारत ने फिलीपींस को 2-0 से शिकस्त दी। उसके बाद दूसरे मैच में भी भारत ने कड़ा मुकाबला करते हुए स्कोर 2-1 कर दिया, लेकिन तीसरे और निर्णायक रेगु में भारत को झटका लगा। फिलीपींस ने वापसी करते हुए तीसरा रेगु 2-0 से जीत लिया। इस तरह भारत ने मुकाबला तो 2-1 से जीत लिया, लेकिन अपने पहले मुकाबलों में भारत जापान और मलेशिया से हार के चलते सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाया। भारत का टीम रेगु अभियान यहीं समाप्त हो गया, लेकिन सैबिक चक्रों के अन्य इवेंट्स में अभी संभावनाएं बाकी हैं।
1: Well, you heard all the special reports. So, where is India in the medal standing? Well, Vijeta Chaturvedi will just tell us.
0: भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक जीत लिए हैं। क्रिकेट में 1 स्वर्ण पदक, शूटिंग में 4 रजत पदक और 3 कांस्य पदक, वेटलिफ्टिंग में 1 रजत, बैडमिंटन में 1 कांस्य, मिक्स्ड मार्शल आर्ट में 1 ब्रॉन्ज और सॉफ्ट टेनिस में 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। इस तरह आज के मुकाबले खत्म होते होते भारत ने पदक तालिका में 13वां स्थान प्राप्त किया।
1: So 24th September Thursday, what does that have in store for us from Japan? Well, Rosha Beena Devi is going to go for gold in Wushu. She's going to be action against Zhang Zhao in the women's 60kg Wushu Sando competition. And don't count out our rowing contingent. They are all in action. There's men's single sculls finals, men's double sculls finals. We have women's four finals as well in rowing, as well as lightweight men's double sculls finals and men's quadruple sculls finals. All gold medal events. Our shooting team will be hoping to put the women's contingent 10-meter air pistol disappointment behind them. The men, can they do the need for tomorrow in their individual and team competition? As well as skeet mixed team competition is also happening and hopefully they get us a medal. We also have athletics action where Asha Lango and Niharika Vashisht are in the women's triple jump final and Seema is in action in the women's 10,000 meters. And finally, the Indian contingent is also in action in the kayak where there are a lot of gold medals at stake. Also in artistic gymnastic, Pranati Nayak is in action in the women's world final. And not only this, but the Indian men's team is in action in Kabaddi. The Indian men's team has a blockbuster hockey match against South Korea. We have our boxers also in action. So it's going to be an action-packed day at the Asian Games. So make sure you stay tuned for all the updates coming to you every hour on the hour from 9:30 a.m. on Akashwani. So for producer Shahnawaz Khan, editor Vandana Bhadwaj and me Abhinav Punchi, we bid you farewell and hoping for another great day for the Indian contingent at the Asian Games.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: सुमित मिश्रा। आइए अब सुने समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार बार दोहराने से ये वास्तविकता नहीं बदल सकती। इस तरह से के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री

0: कार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए के से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाले सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्म कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
1: युवाओं को सशक्त, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्त्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के और तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पुनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का और अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। भारत ने आज ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक जहाज एमवी केप डाओ पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जहाज पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। एशियाई खेलों में रोशिबीना देवी ना ओरेम्ब वुशु के फाइनल में पहुंच गई है। 60 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुनेत्यास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। सेमीफाइनल में भारतीय टीम को चीन से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारतोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। मीराबाई ने 28 वर्ष का सूखा खत्म करते हुए भारत को पदक दिलाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. India today reiterated its interests and concerns with regard to sanctioning Russia and Iran Act. External Affairs Minister S. Jaishankar met U.S. Secretary of State Marco Rubio on the sidelines of the UN General Assembly session this evening and raised concerns regarding the act. Both leaders also discussed India-US bilateral relations and Gulf and Ukraine situations. US President Donald Trump signed into law the Sanctioning Russia and Iran Act last week, which authorizes him to impose tariffs of up to 100% on countries buying Russian oil and gas. In response, New Delhi said that it will take all necessary steps to protect its economic interests and ensure energy security for the nation. Jaishankar, who arrived in New York City on Sunday, is leading the Indian delegation for the 81st session of the UN General Assembly. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar co-chaired the L.69 Consultative Ministerial Interaction on UNSC Reform along with his St. Lucian counterpart Alva Baptist. Addressing the meeting, Dr. Jaishankar noted that the Global South is at the receiving end of the unprecedented changes that the world is undergoing, with the UN falling short of expectations. He also underlined the inability of the UN Security Council to address ongoing conflicts and threats to international peace and security, only highlight the urgency of reform. New Delhi has categorically rejected the unwarranted and factually incorrect references to India in the joint communique of the so-called Organization of Islamic Cooperation, OIC, contact group on Jammu and Kashmir. In a statement, Ministry of External Affairs said the OIC has no local stand-by to pronounce on matters that are strictly internal to India. It said the entire union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are integral and inalienable part of India, and no amount of repetition of politically motivated propaganda can change this reality. The Defence Ministry has signed a contract of over 810 crore rupees with Bharat Dynamics Limited for the procurement of 1